0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: डोनाल्ड ट्रंप चवाहे त ईरान सां जंग बंदी वारो फैसलो पाकिस्तान जे
4: And if I don't like the first sentence, I just throw it away.
5: What was the first sentence?
4: An unacceptable sentence. Because they fully agreed no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of
5: it. So 20 years is not enough for you? It's got to be a permanent...
4: No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is not enough. In other words, it's got to be a real 20 years, not a big one.
5: They've got to get all the fuel out and no more production.
4: We have to get everything, but we're not even talking about going the nuclear dust. Came up with a term which seems to have caught on.
5: I'm talking about because they would not remove the...
4: They said that they can't remove it because they don't have the technology to remove it. Ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective, that's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan with terrific people, the Field Marshal, the Prime Minister.
3: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां जंगबंदी वारो फैसलो पाकिस्तान जे चवण ते हिक फेवर तौर कयो। ईरानी तजवीज़ूं मुकमल तौर ते क़बूलण जोॻियो न आहिनि। वीहनि सालनि ताईं एटमी प्रोग्राम मुअत्तल करण वारी तजवीज़ सुठी आहे। यूरेनियम जे रचाव बाबति लेवल जी ज़मानत तसली जोॻी न आहे। आमना हुरमज बाबति कंहिंजी मदद ज़रूरत न आहे। नई चीनी सरकार खे कंहिं मदद बाबति चयो आहे। कुझु ॾींहनि में ईरान खां तेल वठंदड़ चीनी कंपनियुनि तां पाबंदी हटाइण जो फैसलो कयो वेंदो। ताइवान बाबति अमरीकी पॉलिसी तब्दील न आहे थी। ताइवान खे हथियार ॾियण जी मंज़ूरी नाहे ॾिनी। थी सघे थो त मंज़ूरी ॾियां या न, पर चीन सां तारीख़ी वापारी मुआहिदा थिया आहिनि जंहिंजो अमरीका खे फ़ाइदो थींदो। पाकिस्तान जे चाकड़े में अमरीका सां ॻाल्हियूं नाकाम न आहिनि थियूं। मुश्किल मरहले मां गुज़री रहिया आहिनि। जंग जी शुरूआति बि ईरान ई न कई हुई, रुगो पंहिंजो दिफ़ा कयो। जंग बंदी बरकरार रखण जी कोशिश करे रहिया आहियूं। आबन हुरमज़ में रिंडकनि जी ज़िमेवार बि ईरान न आहे। नई दिल्लीअ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे ईरानी परॾेही वज़ीर बासिर अख़्ती चयो त असां वटि अमरीका ते तबाह करण जो बि को जवाज़ न आहे। मुआहिदे खां पहिरियां सभु शयूं वाज़े थियण घुर्जनि। चीन असांजो स्ट्रेटेजिक भाईवार आहे। अमरीका सां ॻाल्हियुनि में यूरेनियम जो रचाव 1.5 लाख जो शिकार आहे। आबन हुरमज़ अमरीकी जहाज जे मुकमल ख़ात्मे बाद ई खुली सघंदो। आबन हुरमज़ हिन वक़्त बि जंग में मुलस मलिन खां सवाइ ॿियनि लाइ खुलियल आहे। ताक़त जो इस्तेमाल नतीजा न ॾींदो। ईरान जे एटमी प्रोग्राम समेत समूरनि तकरारनि जो हल मुशावरत सां निकरण घुर्जे। मसइले जे हल तकिड़ो हल अमरीका, ईरान ऐं ॿियनि मुल्कनि जे मफ़ाद में आहे। जेडी परॾेही वज़ारत चयो आहे त तकरार जे निबेरे लाइ ॻाल्हियुनि ऐं राब्तनि वारो सिलसिलो जल्द बहाल थियण घुर्जे। ईरान जंग शुरू ई न थियण घुर्जे। हा जेका जंग जो जाइ रहण कंहिंजे मफ़ाद में न हूंदो। चीन सदाई ॻाल्हियुनि ऐं सफारतकारी खे ई हथी ॾिनी आहे। दिलराणी मज़म्मत ईरान खे अमरीका जो मुक़ाबलो करण लाइ वधीक मज़बूत कयो। अमरीकी ऐं इसराइली हमलनि दौरान जदोजहद में समूरी क़ौम मुतहद हुई। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई जो बयान। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हारमी चयो आहे त रत जे आख़िरी फुड़े ताईं ईरान सलामती ऐं आज़ादी जो दिफ़ा कयो वेंदो। ईरान वटि जदीद ज़मीनी ऐं फिज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मौजूदु आहे। जंग में फतह ईरान जी थींदी।

0: पाकिस्तान में दुनिया अकेलो करण की कोशिश में भारत पान अकेलो थी रो है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राजे सरबराह जो एतराफ आईएस दिलत बरतानवी रशियाती इदारे के इंटरव्यू डींदे जो पाकिस्तान के तनाई में धिकण की कहानी पुरानी थी चुकी। पाकिस्तान कदें न टुटन्दो। पाकिस्तान हाने ईरान अमेरिका जंग में टाकड़े कर रो है। वो किरदार भारत के अदा करण घुर्जे। हा पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में मामूली लात। पेट्रोल ऐं डीज़ल फी लीटर 5-5 रुपया सस्तो। क़ीमतुनि में लात बाद पेट्रोल जी नई क़ीमत 409.78 रुपया ऐं डीज़ल जी नई क़ीमत 409.58 रुपया फी लीटर मुक़रर। नोटिफिकेशन जारी।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
1: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03132525786
1: जी हा 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niha Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे में
3: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने बया मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
2: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टर राहिला पटी
3: आई गायनेकोलॉजिस्ट ए औरतन जी बीमारियन जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफताब
2: आई डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंजन 2 वगे खा शाम 4 वगे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियन जो माहिर मंजन 12 वगे खा 1 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा
3: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन राचर जे दी मंजन 2 वगे खा 3 वगे ताई मरीजन जो

0: मत करे रहे है। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी जी बोतल
0: 6 लीटर पानी जी बोतल है ब्यू पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रहे है।
1: उनका अलावा असा रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद है।
0: अवां जे एतमाद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रख दे।
1: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ए बिन तकरीबन लाए हाने असा राबतो करो। असा वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद है। वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 0371800-3920।
0: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती है जो असल राज। सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीहन जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03994
2: अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03312525786

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि किस्तन ते ऐं सस्त छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

पाकिस्तान खे दुनिया में अकेलो करण जी कोशिश में भारत पाण अकेलो थी रहियो आहे। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी राज ऐं गुणे सरबराह जो एतराफ़ एस दिल चयो आहे त बरतानवी नशरियाती इदारे खे इंटरव्यू में हुन चयो त पाकिस्तान खे तनहाई में धिकण जी कहाणी पुराणी थी चुकी आहे। पाकिस्तान कॾहिं न टुटंदो। पाकिस्तान हाणे ईरान अमरीका जंग में टाकड़ियो करे रहियो आहे। उहो किरदार भारत खे अदा करणु घुर्जे हा।

ईरान ऐं अरबी इमारतुनि में इख़्तिलाफ़ सबबि सदारत बख़्श का इजलास बिना नतीजनि जे ख़तम, गॾियल बदराई में जारी न थी। नई दिल्ली में थींदड़ इजलास दौरान मेज़बान मुल्क भारत पारां गॾियल पदराई बदिरां सिर्फ़ सदारती पदराई जारी कई वई। ईरानी बख़्श जे मेम्बरनि मुल्कनि खां मुतालबो कयो त ईरान ख़िलाफ़ अमरीका ऐं इसराइल जंग जी मज़म्मत कई वञे। पेट्रोलियम शंडियागन में मामूली लात, पेट्रोल ऐं डीजल फी लीटर 5-5 रुपया सस्तो। कीमतनि में लात बाद पेट्रोल जी नई क़ीमत 409 रुपया 78 पैसा ऐं डीजल जी नई क़ीमत 409 रुपया 58 पैसा फी लीटर मुक़रर, नोटिफिकेशन जारी। खैरपुर में शादी तकरीब दौरान घोर घुरण तां ख्वाजा सरा जो ख्वाजा सरा ते हमलो, शदीद ज़ख्मी ख्वाजा सरा हाजिन शहर जो चवण आहे त शादी तकरीब में घोर घुरण तां मामले तां ख्वाजा सरा दायम शेख हमलो करे सख़्त ज़ख्मी कयो। जवाबदार ख्वाजा सरा ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मेरा
1: फैन। White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। White H Beauty Cream, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786।
2: जी हाँ 2315525786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे में
2: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पित्ते मसाने बया मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
1: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे का रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनेकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमागी बीमारियुनि जो माहिर मंझन 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली। खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

सिंध हुकूमत जो बारन की बचत सबब लगायल स्मार्ट लॉकडाउन खत्म करण जो ऐलान। मार्केट्स मामूल मूजिब खुलियल हूंद। सीनियर वजीर शर्जी रीना मेमन जो चवण है तो सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी आवाम के वो रिलीफ डिनो है। सिंध हुकूमत दुखियन मुआशी हालतन में भी आवाम ए कारोबारी तबके के मफादन जो तहफ़ यकीनी बनाया है।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
3: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
5: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
4: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
1: जी हा 2315-2575-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जेमे
4: सीजर, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, बिया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था, जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंझंद 2 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा, गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी,
4: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़्ताब,
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजनि जो मुआइनो कंदा, डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकारी चौक, बदीन रोड, मातली। खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राबितो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी, ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

IMF बिजली ऐं गैस महांगी करण समेत नए माली साल जी बजट जे लाइ 11 शर्त रखी छॾिया। FBR जो टैक्स हदफ 15,270 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ छॾी। 215 अरब रुपियनि जा नवां टैक्स बि शामिल। नए माली साल जी बजट में लेवी ज़रिए बि अवाम खां 1,727 अरब उगाड़ण जो मनसूबो बि शामिल। वफ़ाक़ी घरु वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं मुमलिकती वज़ीर तलाल चौधरी सां मिस्री वफ़द जी मुलाक़ात, बितरफ़नि लाॻापनि समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जे घरु अदालतुनि विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। मोहसिन नक़वी चयो त बितरफ़े सहकार जा नवां दग ॻोल्हण में मददगार साबित थींदो।

सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत जे लाइ लॻियल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान। मार्केट्स मामूल मूजिब खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर शहजील इनाम मेमण चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ऐं आवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे। ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि आवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे। पी सी बी चेयरमैन मोहसिन नकवी भारत में रिथियल आई सी सी मीटिंग में शिरकत खे हुकूमत जी मंज़ूरीअ सां मशरूत करे छॾियो। मोहसिन नकवी नई दहिली में रिथियल गजाणी जी दावत मिलण जी तस्दीक कंदे चयो आहे त वज़ीर आज़म इजाज़त ॾिनी त गजाणी में शिरकत जे लाइ भारत वेंदुसि। खैरपुर में शादीअ जी तकरीब दौरान ज़ख़्मी ख़्वाजा सरा हाजन शर चयो आहे त शादी तकरीब में घोर तां ख़्वाजा सरा दाइम शेख हमिलो कराए सख़्त ज़ख़्मी कयो आहे। जवाबदार ख़्वाजा सरा ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ कयो वञे। दड़ो में ॻोठाणनि जो बासर जी ज़्यादतियुनि ऐं लंघ ते कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ अरब जामरी वासियुनि जो बासर ते लंघ ते कब्ज़ो करे ज़मीन में शामिल करण जो इल्ज़ाम। मुजाहिदीन चयो आहे त लंघ बंदि हुअण सबब सॼे ॻोठ खे परेशानी थी रही आहे। बासर ख़िलाफ़ कार्रवाई करे लंघ खोलायो वञे। मीरपुर माथेलो भर सां शेख बिरादरी जी धुरियुनि में संगावाती तकरार सां झेड़ो, अठ ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठ वाघणीअ में झेड़े दौरान लठियूं ऐं सिरोटा लॻण सबब ॿिन्ही धुरियुनि जा अठ ॼणा ज़ख़्मी थिया। ऐं बंगलादेश ऐं पाकिस्तान में ॿी टेस्ट मैच जो पहिरियों ॾींहुं बंगलादेश जी बैटिंग जारी। क़ौमी बॉलर्स बंगलादेश विकेट वठण में कामयाबु।

0: ਸੋਲਰ ਐਂ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਡਰੇ।
1: ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੇ GAFM ਨੈਟਵਰਕ ਪਰ KTN ਨਿਊਜ਼।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4
4: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
1: जी हा 2315-2575-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

चमकता निखार ताजगी के साथ राइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड एज स्किन ब्यूटी शो. आपके सिद्रा यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद है. यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं जनाब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने वाले प्रोडक्ट्स. अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती जो है वो हमेशा बढ़ती रहे, तो आपने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करना है. तो आप लोगों को बताएंगे ये तफसील के साथ साथ. लेकिन यहाँ पर ऐसा करते हैं कि आप लोगों को आज के प्रोग्राम की टॉपिक की जानिब ले जाते हैं. उसके बाद जो है आप लोगों को बताते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा किस तरह से बनेंगे. तो यहाँ पर आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक आप लोगों से पूछा जा रहा है वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि बहुत से लोग जो है ना वो कुछ लोग तो स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग ओवर स्मार्ट हो जाते हैं. तो ऐसा होता है कई मरतबा आप अपनी ओवर स्मार्टनेस की वजह से फंस भी जाते हैं. बहुत जगहों पर ऐसा सीन हो जाता है, आप फिर ये बोलते हैं कि भाई काश मुझे ये नहीं करना चाहिए था. तो आज आप मुझे ये बताने वाले हैं क्या आप कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में कहीं पर फंस गए हैं, और फंसे हैं तो कैसे बाहर निकले उस सिचुएशन से. बिल्कुल जी, ये आज आप मुझे बताएंगे. ये बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे. और साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं शो के अंदर, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888-1 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो GL लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, और GL लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर हमारी पोस्ट आपको मिलती है जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है. जल्दी जल्दी से पोस्ट को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को मेंशन कीजिए और उनको भी बताइए कि वो भी खूबसूरत बन सकते हैं भाई जान. तो आप भी खूबसूरत बनिए, खूबसूरती की दुनिया में आपको वेलकम एंड खुश आमदीद. और साथ ही साथ आज आप मुझे बता रहे हैं कि आप कभी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश में फंस गए हैं, और फंसे हैं तो फिर बताएं सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकले. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है आज. आप टॉपिक के ऊपर बात कीजिएगा, मैं जानना चाहूंगी. और ये तो हर किसी ने ट्राई किया होगा, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश तो हर कोई कर रहा होता है. ओके जी, इसी के साथ साथ आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं. बिल्कुल जी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो चीज बताने वाली हूँ वो ये है कि भाई आप लोगों के लिए जो प्रोडक्ट लेकर आई हूँ तो उन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा खुलासा कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास आप लोगों को बताने के लिए प्रोडक्ट्स है जनाब, जिनमें व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है, और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको व्हाइट एज का फेस वॉश मिल रहा है, जो कि विटामिन सी वाला फेस वॉश है. और उसके साथ साथ अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन सी का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज का. और अगर आप जो है वो साबुन लगाने वाले लोग हैं, साबुन लगाते हैं, तो भाई व्हाइट एज का सो भी मौजूद है, सो भी आप ट्राई कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप गर्मियों में कोई लाइट वेटेड फार्मूला चाहते हैं, लाइट वेटेड क्रीम चाहते हैं जो कि भाई आप लोगों को मेकअप से भी बचाए और आपकी खूबसूरती को भी बहाल रखे, तो उसके लिए व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है. और व्हाइट एज की लवली क्रीम के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम भी मिल रही है, और उसके अलावा डॉक्टर पिंपल का एक्नी क्लियर ट्यूब भी मिल रहा है. और डॉक्टर पिंपल का एंटी एक्नी ये क्रीम जो है, एंटी एक्नी क्रीम आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार होता है उन लोगों के लिए, खास वो लोग जिनके चेहरे पर एक्नी बहुत ज्यादा आते हैं, एक्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऑयल फ्री स्किन चाहते हैं, तो भाई आपने डॉक्टर पिंपल का ये ट्यूब इस्तेमाल करना है जो कि व्हाइट एज वालों का है, ठीक है जी. और इसी के साथ साथ लोशन भी मौजूद है इनका, और हेयर रिमूवल लोशन भी मौजूद है. बहुत सारे मजे के प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, खूबसूरती को बढ़ाते हैं और हमेशा खूबसूरत रहते हैं. और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपकी सिटी में मिलनी चाहिए जाहिर सी बात है, तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03-15-799-0595. बिल्कुल जी, 03-15-799-0595 ये नंबर डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए ये तमाम प्रोडक्ट. ओके जी, तो फेसबुक वाली जितनी भी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद हैं, आप काइंडली पोस्ट को लाइक और शेयर बहुत ज्यादा कर दिया करें, ठीक है. शेयरिंग इज केयरिंग होती है, जल्दी जल्दी से. और इसके अलावा अनवर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं. अनवर भाई वालेकुम अस्सलाम, लिखते हैं उस्ताद बुखारी की शायरी, उम्मीदों आसरा पलिया को न होंदई, करे याद घोड़ा झलिया को न होंदई, जमानो घणोई रुलियो तू भी होंदे, असा जिड़ा माणो मिलिया को न होंदई. वाह वाह, वेरी नाइस. और आदिल हुसैन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम, वक्त वालों को तो मयसर हो, हम कम वक्त अब किधर जाएं, बस आप यहीं बैठे रहिए हमारी पोस्ट पर. यूनिस खोड़ो हमें सुन रहे हैं, यूनिस खोड़ो वालेकुम अस्सलाम, आप हमें दौलत गोट से सुन रहे हैं, वेलकम जी. अहमद आलार हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. और हिदायतुल्ला अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, हेलो वालेकुम अस्सलाम. इमरान अली उज्जैन भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी.
انور بھائی بالکل آپ کی فرمائش کا گانا لگائیں گے, لیکن یہ بات ہے کہ مجھے ذرا سنگر کا نام جو ہے نا وہ مینشن کیجیے, مجھے نہیں پتا یہ گانا میں سرچ کروں گی تو مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا. اور نور حسین تنیو بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فرام لاڑکانہ. ادی سدرا گڈ آفٹرنون, ہیو اے نائس ڈے. اوکے جی, بہت شکریہ آپ نے دعائیں دے دی ہے مجھے. اور اس کے علاوہ ہیں جی محمد زمان, وعلیکم السلام. اوکے جی, سو آپ زیادہ سے زیادہ پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے. کشور بھائی کہتے ہیں ٹاپک ہم بچپن سے اسمارٹ ہیں تو اوور اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جو کام آپ بچپن سے کرتے ہو اس میں کبھی دھوکا نہیں کھاتے. یہ تو ہے ویسے, ہاں ویسے آپ ایکسپرٹ ہو چکے ہوں گے. چلیں, لیکن آج بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں نا جو اوور اسمارٹ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ سارے لوگ مجھے یہ بتائیں گے کہ جب کبھی آپ نے اوور اسمارٹ بننے کی کوشش کی اور آپ کہیں پر پھنس گئے اپنی اوور اسمارٹنیس کی وجہ سے, تو وہاں سے آپ کیسے باہر نکلے. یہ آج آپ میرے ساتھ ایکسپیرینس ذرا اپنا شیئر کیجیے. اور اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو 888 اور فیس بک پر آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں. پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے جائیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ لگاتے جائیے جناب وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس. اور یہاں پر ٹائم ہو جاتا ہے ذرا ہم شارٹ کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں, اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ موجود رہیے, سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں ذرا یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں, سو اسٹے ٹیون, اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ 88 نیٹ ورک. سنتے رہیے پروگرام وائٹ ایش اینڈ ٹی اسکن بیوٹی شو.

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713030।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03132525786
1: जी हा 2315-2575-786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

गर्मियों का सीजन है भाई, क्रीमें कैसे लगाई जा सकती हैं, तो गर्मियों के सीजन में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये चीज है, थोड़ी सी इस चीज को ना आपने नजरअंदाज नहीं करना कि जब आप क्रीम लगाएं ना, ब्यूटी क्रीम लगाएं, तो उसको रात के टाइम ही लगाया करें। नाइट क्रीमें तो आप नाइट के टाइम ही लगाया करें। उसके अलावा जो है ना, अपना फेस अच्छे से क्लीन रखा करें। फेस का जो है ना, ऐसा होता है कि अक्सर लोग हमने देखे हैं जो कि अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते हैं ठीक तरह से, उन्हें पता नहीं होता कि भाई क्या टाइमिंग है फेस वॉश करने की, क्या टाइमिंग है और कितनी मरतबा आपने फेस वॉश करना होता है, तो वो बस लगा रहे होते हैं, सोप का यूज कर रहे होते हैं, फेस वॉश का यूज कर रहे होते हैं, ना पता कि किस तरह और क्यों लगाना है। तो उन लोगों की स्किन अगर देखा जाए ना, तो वो खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा ओके शोके रहे, ग्लो करते रहे, फेयर रहे, और आपके चेहरे की स्किन जो है ना वो फ्रेश भी रहे, तो आपने व्हाइट एश का जो है ना वो फेस वॉश भी इनके पास अवेलेबल है और सोप भी अवेलेबल है। अगर आप फेस वॉश लगाते हैं तो भाई फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे। व्हाइट एश का फेस वॉश है जो कि विटामिन सी से तैयारशुदा है, आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है, आपके चेहरे की स्किन को ग्लोइंग करता है और साथ ही साथ आपके चेहरे पर जो है ना एक अच्छा और फ्रेश सा लुक भी देता है। उसके अलावा व्हाइट एश का साबुन भी मौजूद है, सोप भी आए बाबा। अगर तुम्हें साबुन लगाई ना, तो तुम्हें साबुन लगाए सको तो व्हाइट एश जो एलोवेरा एवोकाडो से तैयार थे है, तो तुम्हारी खूबसूरती जगह है वो हमेशा बरकरार रहने वाली है, तुम्हारी स्किन फ्रेश रहती, फेयर रहती, प्रोटेक्ट होती जनाब हर साइड इफेक्ट का। तो तुम्हें बस आनी इस्तेमाल कर सको था, कितना भी बनी बस आनी वी सको था। अगर तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल ना है, तो तुम्हारे लिए नंबर आए जनाब जो तुम्हारा डायल करी पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था। नंबर आए 03157990595। उन अलावा जगह मानो असा सखर में बुधन पे दिलशाद जनरल स्टोर आए गरीबा बाद में तुम्हारा सखर वारा जगह मानो दिलशाद जनरल स्टोर तुम्हें वी सको था। मजेदार गाल से कि अक्सर मानू मुखा पुछन पया अज भी मु मैसेज डिठा बैठ रहे ये होया था गर्मी जो मौसम हों तो गर्मी में प्रोडक्ट लगाने का तुम थोड़ो अवॉइड करना हो तो डिठो वे तो गर्मी जो जो सीजन हों ना गर्मी में तुम्हारी स्किन की अना केयर की जरूरत होंगी है। सियारे में तो वैसे ठीक है तुम्हारी स्किन जी वह सही होंगी है, लेकिन गर्मी में तुम्हारी स्किन जी वह खराब थी वी खराब थे चांसेस खोर सारा हों उस होंगी है, या फिर तुम्हारी स्किन से जो सही तुम सनस्क्रीम यूज कर सो तक नॉलेज न होंगी इन चीजों की, तो तक यह शे खबर होजन घुर्जी, तो गर्मी में तुम्हारी स्किन की अना केयर की जरूरत होंगी है। तुम फेस वॉश कर स्किन के क्लीन रखो था तो सुठी गाल है, तुम पानी जो इस्तेमाल जाम कर व्हाइट एसी लवली क्रीम यूज कयो। व्हाइट एसी जी का लवली क्रीम आना ये तो बाबा गर्मियों जो सफाई तोड़ अव व्हाइट एसी लवली क्रीम जिन अंदर टी वाइटामिन जहाँ कैप्सूल मौजूद है जी तुम्हारी स्किन की हर वाइटामिन के पूरा कदा गडो गड रोजाना तुम इस्तेमाल कर सो ये लाइट वेटेड फार्मूला है, जब तुम नॉर्मल कोई भी फेयरनेस क्रीम चाहो था तुम्हें सुठी फेयरनेस क्रीम ना मिली तो व्हाइट एसी लवली क्रीम बिल्कुल लगा सो था। व्हाइट एसी लवली क्रीम के अंदर जो सनस्क्रीम भी एड कई वही है जी तुम्हारी स्किन की उस किरण का बचाई है तुम्हारी स्किन की हिफाजत भी कंदी है। तो इन के अंदर जी ना वाइटम्स मौजूद है, वाइटामिन्स जैमें बी थ्री है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन ई है, वाइटामिन डी है, खोड़ सारा वाइटामिन्स है जी तुम्हारी स्किन की हिफाजत कदा, तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट कदा, तुम्हारी स्किन के खूबसूरत भी बनाईंदा। तो व्हाइट एसी जी लवली क्रीम है ना, यह तो तुम सब लाजमी ट्राई कर दिसो। अलावा इनमें का भी एज लिमिट ना है, तुम हर एज वो मू इनके इस्तेमाल कर सो था, स्कूल गर्ल आयो, कॉलेज वेंदा आयो, यूनिवर्सिटी वेंदा आयो, ऑफिस वेंदा आयो, कोई भी वही जॉब कदा आयो, नंढी जॉब कदा आयो, कुछ भी कदा आयो, तो तुम व्हाइट एज लवली क्रीम है ना, वह लाजमी अप्लाई कर सो था, लाजमी ट्राई कर सो था। तुम्हारी स्किन की जो ना ग्लो भी डींदी, खूबसूरती भी डींदी, तुम्हारी स्किन की हमेशा फ्रेश ग्लोइंग बनाए रखी। सो लाइट वेटेड फार्मूलो है, तुम इजीली वी सो था, बिल्कुल तुम्हारी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर तुम्हें मिली वो, तो तुम लाजमी ट्राई कर दिसो, तो बुधाओ तुम रिजल्ट्स कि मिलिया है। उन गोगर तुम अगर पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराने चाहो था, तो तुम्हारे लिए नंबर है जना जो तुम लाजमी डायल कर, नंबर है 03157990595। ओके सो जल्दी जल्दी नंबर से राबो करो, पांच करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल करायो, इस्तेमाल कदा वो व्हाइट एज का प्रोडक्ट जी तुम्हारे तैयार कया वाया है। ओके सो मुझे वहां का सवाल पूछो है, सवाल पूछो है बाबा, तो ता मुखे बुधायो करे तवा ओवर स्मार्ट बनजंदा आयो, यानी कि खोड़ मानोड़ा होंदा है कि ओवर स्मार्ट बनजंदा है, आई कई मर्तबा पांजी ओवर स्मार्टनेस की वजह से वो फांसी भी पवंदा है किथे न किथे तो ता मुखे बुधायो करे सा तवा सा यो सीन थियो है, अगर थियो है तो ता उन केस मा किए निकता आयो, तवा किए पांजी जान छदाई है, आई
अगरि तव्हां ओवर स्मार्ट थियण जो तव्हांखे ॾाढो शौक़ु आहे त बाबा थोरो हथु हल्को रखो. उन खां अलावा गानो लिस्ट में मौजूदु आहे, गानो ॿुधंदासीं. तव्हांजे मैसेज तरफ़ अचूं था, तव्हां छा था चओ इहो बि ॾिसंदा हलंदासीं. तव्हांजा जेके कॉमेंट आहिनि जेके तव्हां मूंखे फेसबुक ते ॿुधो पिया, तव्हां काइंडली पोस्ट खे लाइक एंड शेयर ॾाढो कंदा कयो, ठीकु आहे? घणो कंदा कयो, लाइक एंड शेयर कयो, जीअं माण्हुनि खे ख़बर पए त मार्केट में वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अची विया आहिनि ऐं तव्हांखे इस्तेमालु करणा आहिनि, जे तव्हांजी ख़ूबसूरती वधे ऐं तव्हांजी स्किन प्रोटेक्ट रहे.

अच्छा मेहताब अली इंटर भाई हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम मेहताब भाई. वीरू मल मेंगवार हमारे साथ है, कहते वी वी आई पी शो मीरपुर खास से सुन रहा हूँ. थैंक यू जी वीरू मल भाई, आपको वेलकम करते हैं. सलीम रजा बिरोही हमारे साथ मौजूद है, हेलो. वालेकुम अस्सलाम. गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ साथ जी, वालेकुम अस्सलाम, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है. गुलाम कादिर भट्टी वालेकुम अस्सलाम, कहते जी आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है. फ्राम मटियारी से प्लीज सॉन्ग आप कितने हसी हैं. चले मैं कोशिश करती हूँ, ये वाला गाना हम लगाएंगे, ठीक है. और नूरिस एंटोनियो भाई हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया. क्या कहते हैं शो, अच्छा कहते हैं शो बाज भी नहीं करता हूँ, हमेशा नॉर्मल होता हूँ. चलिए ये भी अच्छी बात है. अच्छा उनका अलावा इकबाल आशारी भाई हमें मीरपुर खास से सुन रहे हैं, वेलकम जी. हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, आइए मासूम नो चालाक ब्रो. ओके ओके. किशोर भाई लिखते हैं कि प्यार में भीख मांगने का दर्द समझते हो और भीख में भी अगर वो प्यार ना मिले उसका दर्द समझते हो. बिल्कुल जी समझते हैं.

और बाणी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, ऐसन साला खुश आयो। उदास लड़की हमारे साथ है, हमारी निदड़ी। वेलकम टू यू केती, वेलकम टू शो। ओपा जानी, वेलकम टू यू ओपी। आप कहाँ गुमसुम है ओपी, बताएं तो जरा। हाकिम राज हमारे साथ मौजूद है, शो इज बेस्ट। थैंक यू हाकिम, आप हमें मिठी से सुन रहे। दर्द दिल आ चुकी है। वालेकुम अस्सलाम प्यारी। वफा शहजादो मक्सी हमारे साथ है। वफा शहजादो मक्सी भाई, आपका भी वेलकम हो गया जी। और साथ साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहां से मालूम लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इजीली परचेज कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। एक और मजे की बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि व्हाइट एश अगर आप ब्यूटी क्रीम नहीं लगा पा रहे हैं तो भाई आपके पास जो है ना वो फेयरनेस क्रीम है, और उसके अलावा लवली क्रीम जो है ना ये भाई तो आपके लिए मतलब ऐसा है कि गेम चेंजर वाला काम करेगी। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, सर्दियां हो या गर्मियां हो आप लाजमी लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके लिए सोप भी मौजूद है और फेस वॉश भी मौजूद है, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बस तुम दिल वडी कयो।

नसीम अहमद खोड़ो भाई भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। नसीम भाई छाला तांजो खुश आयो। और मुलाजिम भाई भी हमारा शो सुन रहे हैं, वेलकम। और उसके अलावा नसीम भाई क्या कहते हैं, काफी टाइम खां पोए तमां के बुधाने जो टाइम मिलियो, पर तमां जा टहक सागा या है बस जियो के रेस ये न। और कहते हैं स्क्रीन ते मायूं त सफा भलियो आए न। बिल्कुल जी। और कहते मुस्कान अवल हिकड़ी हिकड़ी क्रीम जी डबी तू वठी दे मां लगाए दसा, अगर सोनो थी वयस त बी डबी मां पाण वठंदस। अगर इंगे रहो त पो इलाही सारा लिसनर आइन के मुखे वठी देणी पवंदी। एक दफो ता पाण वठो, अगर तमा के मजो अची वे त पो ता जी दिल चोंदी वराए पे वठो। सही आ, मां हिक के राजी न कंदम न, मुजा सब लिसनर आइन त मां सोचा दी त ता सब अवल पाण वठो, तमा के मजो इंदो बाबा। लगाए जदी तमा वाईटी सी क्रीम लगाईंदा न पो तमा के रिजल्ट मिलंदा, पो ता पाणी चंदा पैसा वसूला बाबा। ओके जी, अब्दुल रजाक जरदारी हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम नवाबशाह, वेलकम वेलकम। निदड़ी कहती है कि मैं यूज करती हूँ व्हाइट एज लवली ब्यूटी क्रीम एंड फेस वॉश भी लूंगी। ओके ओके। अहमद कहते हैं थैंक्स। अच्छा चलिए, हाँ ये सुनकर वाकई बड़ा दुख हुआ। ओके जी, किशोर भाई कहते हैं अदी हिकड़ी क्रीम सा गड घट में घट एक एसी तो दियो। हाँ सफा नंढड़ी फरमाइश कई अव, नंढड़ा फेन मिलंदा है ना सफा, एतरा नंढा हथ जेतरा हूंदा आहिनि, अगर उहे चओ त हिकु हिकु वठी जाव। वो सारा ओका से बाहर वाला बजट हो जाएगा, समझ रहे।

0: अच्छा या त गाल वैसे थोड़ी असा न मनदा सी सोना जगे हुंदा न बेवफा नाइन हुंदा बाबा यो के तमा के दसियो आहे सोना त भला हुंदा है अन्या अगर तुम वाइट एज का प्रोडक्ट लगाईंदा तो अन्या सोना थी वा तो तुम लगाए बाबा कें गाल्हि ध्यान नींदा कर एडम कहती है कि प्लीज प्ले ओकी ओकी और कहती दिलबर दोस्त जानी सिद्रा ये आपको डेडिकेट है गाना ओके जी मैं लगाने की कोशिश करूंगी मीरपुर खासी अब्दुल्ला बहरी वालेकुम अस्सलाम बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है सॉन्ग सुनाए फायसाली का ओके जी फायसाली लगाएंगे यासीन बुटाड़ो हमारे साथ मौजूद है सकरण से कहते हैं वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अमा बुधायो कि आयो व्हाइट एश एंटी स्किन प्रोडक्ट गर्मी में यूज करण सही आहिनि सही बिल्कुल सही आहिनि बाबा बिल्कुल गर्मी में यूज करे सघो था तॾहिं त तव्हांजे लाइ गर्मी में प्रोग्राम आंदो आहे न ॻाल्हि खे सम्झंदा कयो यासीन भाई तुम बिल्कुल लगाए सको था नो टेंशन सही और फहा देरी है सऊद देरी फ्रॉम नवाबशाह के सलामती शो नाइसा तांजो हुमेरा चन्ना जो कोई भी गानो बुधराए जो हाजिर हाजिर ही हुकुम कयो और मीरपुर खास का अब्दुल्ला महर कहते हैं बाजी अच्छा या वरी केड़ी गाला भला अच्छा इते पैनल ते केंजो ना खाली मैसेज मिलो है अगर न पढ़ा तांजो तो समझी वंजो ठीक है और रसूलाबाद खां आबिद हुसैन शंबानी वालेकुम अस्सलाम अदी
1: किताबा पईया पढ़े ना बारे वे बगैर हुंदे एहो जसे
0: फिलहाल त यो ही आहे बुधो था सो तव्हां भा ज़रूर लॻाइजो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम अगरि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम नथा आणो त व्हाइट एज जी लवली क्रीम त लाज़मी लॻाइजो ठीकु आहे जी तव्हां बि लवली लवली थी वञो और ॻोठ नबीदाद बंबरो नारो खां इमाम ॾिनो बंबरो है कहिड़े प्रोग्राम जी ऐं अव्हां जी कहिड़ी तारीफ़ करियां ॿई लाजवाब हो अला ॿुधायो

बस साईं वाह पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कयो था न ॿुधायो त साईं जीअं तव्हां पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर न कयो आहे न त बाबा करे वठो अच्छा निदड़ी कहती है कि टॉपिक नहीं ओवर स्मार्ट नहीं बनती मैं जो हूँ वैसी रहती हूँ मैं सैड ही ठीक हूँ अच्छा यानी तव्हां उदास रहण वारा माण्हू आयो उदास न रहंदा कयो एतिरो उदास जेको न पंकज सिर्फ़ भलो लॻंदो आहे ॿिया प्रेमचंद भाई हमारे साथ मौजूद है हेलो अहमद कहते हैं टॉपिक हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना अगर फंस जाते हैं तो खुद निकल भी बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं अच्छा जी अच्छा यानी सुठो एक्सपीरियंस है तमाम जो माशाल्लाह किशोर भाई एड़ी भविष्यवाणी तो न कयो ना बाबा

0: इट्स 2 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय.
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत.
2: ही अदालत में पिनके केस सचल थाने ते दाखिल केस में पेश कयो वियो.
3: मंदशाद केस में गिरफ्तार अनमोलर पिंकी जो जांच दौरान तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम. अदालती अहाते में पिंकी जो दाहूं जांच दौरान दाबा विझी कूड़ा बयान वठण जो इल्ज़ाम. पिंकी जज आरो बयान डिनो तो सब कुछ अगुणो मुड़स करार रो है मुख्य 22 डी अग खयो वो मखसूस बयान लाय तशद्दुद जो निशानो बनाया वो.
2: IMF बिजली ऐं गैस महांगी करण समय ते नए माली साल जी बजट जे लाइ 11 शर्त रखी छॾिया. FBI जो टैक्स हदफ 15,260 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾेई छॾी. 215 अरब रुपियनि जा नवां टैक्स बि शामिल. नए माली साल जी बजट में लेवी ज़रिए बि आवाम खां 1727 अरब उगाड़ण जो मनसूबो बि शामिल.
3: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी ऐं ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी सां मिसरी वफ़ा जी मुलाक़ात. बतरफ़न लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं. ॿिन्ही मुल्कनि जे घरू वज़ारतनि विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़. मोहसिन नकवी चयो त मिसरी वफ़द जो दौरो बतरफ़ी सहकार जा नवां दग ॻोल्हण में मददगार साबित थींदो.
2: सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत जे लाइ लॻायल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान. मार्केट मामूल मूजिब फिरियल हूंदियूं. सीनियर वज़ीर शहजी इनाम अहमद चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी ऐं अवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे. ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि अवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे.
3: PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी भारत में थियल ICC मीटिंग में शिरकत खे हुकूमत जी मंज़ूरीअ सां मशरूत करे छॾियो. मोहसिन नकवी नई दिल्ली में थियल गॾिजाणी जी दावत मिलण जी तसदीक कंदे चयो आहे त वज़ीर आज़म इजाज़त ॾिनी त गॾिजाणी में शिरकत लाइ भारत वेंदुसि.
2: कंडियारो में सिंध पब्लिक सर्विस में मेरिट जी मुबैना लताड़ ख़िलाफ़ तालीमी तनक़ीदी फोरम जे सद ते एहतजाज. मुज़ाहिरीन पारां हाईकोर्ट जे गडियल चटाभेटी इम्तिहान जा नतीजा मुअतल करण वारे फैसले जी आजियां. करप्ट अमलदारनि खे हटाए SP ST खे ख़ुदमुख़्तियार इदारो बणाइण जो मुतालबो.
3: ट्रिप बीहर शाह में उजड़ माइनर जे आबादगारनि जो पाणी घोट ख़िलाफ़ धरणो. आबादगारनि पारां लिंक रोड ते तारनि खे बाह ॾेई धरणो खयो वियो. आबादगारनि चयो आहे त उजड़ माइनर में केतिरनि सालनि खां पाणीअ जी फराहमी बंदि आहे. ज़मीनूं बंजर थी रहियूं आहिनि. पाणी पहुचाए मसलो हल कयो वञे.

0: दड़ो में ॻोठाणनि जो बासर जी ज़ियादत ने लघ ते कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतजाज। ॻोठ अरब जामरी वासियुनि जो बासर ते लघ ते कब्ज़ो करे ज़मीन में शामिल करण जो इल्ज़ाम। मुजाहिरीन चयो आहे त लंघ बंदि हुअण सबब सॼे ॻोठ खे परेशानी थी रही आहे। बासर ख़िलाफ़ कार्रवाई करे लंघ खोलायो वञे।
1: मीरपुर मां दिलो भरसां शेख धुरन में संगावती तकरार तां झेड़ो, अठ जणा जख़्मी। ॻोठ वागड़ी में झेड़े दौरान लथियूं ऐं सिरोटा लॻण सां ॿिन्ही दरनि जा अठ जणा ज़ख़्मी थिया।
0: बंगलादेश ऐं पाकिस्तान में ॿी टेस्ट मैच जो पहिरियों ॾींहुं बंगलादेश जी बैटिंग जारी। कमी बॉलर्स बंगलादेश जूं अहम विकेट वठण में कामयाब।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध धरती FM 88 मीरपुर खास जो आवाज
4: जो इंस्टीट्यूट ऑफ
5: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
6: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
8: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
7: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
8: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
7: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125257-86
1: जी हा 2315-2575-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

हम वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखे मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपकी सिद्ध आप लोगों के साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और आप हमारे साथ हैं मुझे पता होना चाहिए और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल सुना व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो में आप अगर हमारे साथ हैं तो भाई जान आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये बिल्कुल हक नहीं बनता कि आप इन सारे प्रोडक्ट से जो है ना वो ना वाकिफ रहें. आप सारे प्रोडक्ट से जो ना वाकिफ हो जाइए कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपकी खूबसूरती को किस तरह से बढ़ाएंगे और आपने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है सबसे बड़ी और सबसे पहली बात. तो अगर आपकी स्किन भी सेंसिटिव है और आपकी जो प्रोडक्ट की सिलेक्शन है वो थोड़ी सी पूर है यानी कि आप लोगों को समझ नहीं आता कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है कौन सा नहीं लगाना है कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन के ऊपर सूट करेगा, ये चीजें जब आप समझ नहीं पाते हैं आपको कोई समझाने वाला नहीं होता तब एंट्री मारती है आपकी सिद्रा. समझ रहे बिल्कुल सी आपको बताने के लिए कि अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं तो मार्केट में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भाई अपडेट होते रहते हैं ना प्रोडक्ट, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती तो आपकी स्किन जो है ना वो प्रोडक्ट्स चाहती है, आपकी स्किन को प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं. गर्मियां हो या सर्दियां हो हर हिसाब से जो है ना आपके पास प्रोडक्ट होना जरूरी है. लड़के लड़कियां सारे जो है ना प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. अगर हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की

पैदा होने वाला प्रोडक्ट है और सिर्फ दो रातों के इस्तेमाल से आपको बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो बिल्कुल जी, कौन सी बात है जो आपको इस्तेमाल करने से रोक रही है, बताएं जरा मुझे। बुधाए वजू मुखे खबर पवे मुखे। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है जिसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स शामिल है और साथ साथ सिर्फ दो दिनों में वाजे नतज के लिए डी स्किन व्हाइटनिंग क्रीम जो है ये आपकी स्किन को व्हाइट कर देती है। इस्तेमाल करें और जदीद अजा से जो है ना ये तैयार की गई है और इसके अलावा रात भर अगर आप इस्तेमाल करते हैं रात भर आपके चेहरे पर लगी रहती है तो आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आपकी जल जो है वो चमकदार हो जाती है, डार्क सर्कल्स वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे पर जो है ना वो बहुत सारे ऐसे मसाले चल रहे हैं जिनका आप खात्मा चाहते हैं तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती है, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, चमकदार हो जाती है, जिंदगी की साख जो है ना वो बेहतर हो जाती है और इसके अलावा आपकी स्किन खूबसूरत नजर आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये फार्मूला जैसे ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाते हैं ना तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और जनाब उसके अलावा एक और मजे की बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये ऑल स्किन टाइप के लिए हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है और जो मुझे मजे की बात लगती है वो ये कि भाई ये जो प्रोडक्ट होती है ना ये ऑल स्किन टाइप वाले आप इस्तेमाल किया करें। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो या फिर ऑयली हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो तो हर स्किन के ऊपर जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको पता होना चाहिए आप लोगों को कि आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं और जो प्रोडक्ट आपके ऑल स्किन टाइप के लिए वही प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ऑल स्किन टाइप के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो डी स्किन का फेस वॉश भी आप इस्तेमाल करेंगे इजीली, आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं फर्ज कले नहीं मिल रहे तो उसके लिए आप डायल करेंगे जनाब 03-15-799-0595 ये नंबर जल्दी से डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर परचेज कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश। ओके जनाब, खूबसूरती को बढ़ाते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखा करिए, अगर आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। हाँ ॿुधायो ज़रा, तव्हांजो दुश्मन त न रखंदा न करे तव्हांखे पाण खे रखणो आहे इहो ख़्यालु, ऐं अगरि तव्हां पंहिंजो ख़्यालु न रखंदा न त तव्हांजी जेका उमिरि आहे न उहा अञा वॾी लॻंदी, तव्हां उमिरि खां इलाही वॾा लॻंदा जेके माण्हू पंहिंजो ख़्यालु नाहे रखंदा। सो पंहिंजो ख़्यालु रखो बाबा, हमेशा ख़ूबसूरत ॾेखारी ॾे और हमेशा अपनी स्किन का अपना ख़्यालु रखते रहनि, ठीक है जी। और उसके अलावा यहां पर आपके मैसेजेस हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम पढ़ेंगे, आप क्या कह रहे हैं वहां जी, बिल्कुल कॉमेंट्स भी हैं आपके पैनल पर, मैसेज भी हैं, आपकी कॉल्स भी हम लेंगे।

कुछ आपके मैसेजेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद जरा आप लोगों की कॉल्स की जाने बातें हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ मुझे मैसेज मिला है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, जो जाने क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ, नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। हमारी प्यारी लुबी हमें सुन रही है, लुबड़ी को वेलकम करती है। उसके अलावा हमारे साथ हैं जी यहाँ पर अरीबा, कहती हैं प्यारी आपी जान जवाब है नो ओवर स्मार्ट में, और मेरी दिलबर दोस्त भाभी इरम, हम दोनों बचपन से नॉर्मल है। अच्छा, तो क्या वो एब नॉर्मल होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि लोग क्यों कह रहे हैं कि हम नॉर्मल हैं, क्या मतलब वो नॉर्मल नहीं होते? अरे भाई हाँ, वो सभी नॉर्मल होते हैं। और उसके अलावा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और इनम कहती है मेरी दोस्त ये आपको डेडिकेट जाता है गाना, मैंने बिल्कुल ही आपका गाना जो है ना वो सर्च किया तो मुझे यूट्यूब साहब ने बोला कि ये गाना हमारे पास नहीं है, या तो आप गाने का कोई मिस्टा मुझे लिखकर सेंड कर रही है, जिस वजह से ये आपकी जो लाइन्स है ना ये यूट्यूब साहब को जरा पसंद नहीं आई, तो आप जरा गाने का टाइटल लेके भेजा करें जिससे मुझे गाना ढूंढने में आसानी हो जाए, ठीक है। और उसके अलावा प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ है फ्राम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम, कहते सलाम पाकिस्तान, पाक आर्मी स्वीट शो, प्लीज रहमान मुगल हई रहमान मुगल रोज मुखावेसरी वने, तो मां कोशिश कदम हलाईंदम तवाजो गानो। और गोठ हाजी गुलाम खास के लिए झंडो मरी खां कुर्बान खास के लिए ससगर मौजूद आए झंडो मरी वारो भाई अव गोठ मोहम्मद तैयब थे बुखा पे बोला थे बू कहते तवाजो शो वेरी नाइस आहे हाय अल्लाह मसद को वणा में ओगरी तमहा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो पया कोन डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा जे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल आहे कोन इयो तमा मखे लाजमी बुधाई ना कयो ओके जी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए, और जरा मुझे बताइए कि आपके एरिया में मिल रही है नहीं मिल रही है, और उसके अलावा नंबर जो आपको बताया जा रहा है उसके ऊपर आप रابطہ किया करें।

ओके जी, यहाँ पर प्रेमचंद भाई हमारे साथ है। प्रेमचंद भाई कहते हैं मुझे फायजा अली का गाना सुनाइएगा। फायजा अली जो गानो बिल्कुल तहां की बुधराइंदा जी। दर्दे दिल कहती हैं कि हाय ना ना, मैं ना मैं स्मार्ट हूँ ना ही मैं बनने की कोशिश करती हूँ। एक बार किया था, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, सबक मिले मैंने। नन्ना निदड़ी तवा ॾाढा भला आयो माशाल्लाह। और उन खां अलावा ये वीरू मल मेघवार भाई लिखते हैं, सिद्रा सिस्टर हमें भी स्मार्ट होना है, और साबुन लगाए या क्रीम लगाए आप ही बता दें हमें। भाईजान तवा बई चीजू लगायो, हिकड़ी चीज न लगाईंदा कयो, तव्हां साबुन भी लगायो, तव्हां क्रीम भी लगायो, छो त बई चीजू अलॻि अलॻि आहिनि ऐं बई चीजू तव्हांजी स्किन जे लाइ ज़रूरी आहिनि। सो जेकी चीजू तव्हांजे लाइ ज़रूरी आहिनि उहे सभु लगायो, ठीकु आहे। तव्हां साबुण बि लगायो, तव्हां क्रीम बि लगायो, भले तव्हां फेस वॉश बि लगायो, ऐं हा वाइट एसी लवली क्रीम त लाज़मी लगाइजो, समझो था। वाइट एसी क्रीम जेका आहे तव्हां फेयरनेस क्रीम जेका आहे उहा तव्हां ॾींहं जो लगायो, जेका ब्यूटी क्रीम आहे तव्हां राति जो लगायो, समझो था। कॾहिं कॾहिं त अलाह पाण ते खिलाईंदी आहियां, मां एॾो ॻाल्हाईंदी आहियां। इतना कोई कैसे बोल सकता है, लेकिन मैं बोलती हूँ। आबिद हमारे साथ है, फेरोज अली बिरोही भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी। ऐसे तवा गानो लिखियो आए, बिल्कुल तांजो गानो हलाईंदा सी, पर हते एकड़ो मोट गानो आए जेको फायजा अली जी आवाज में गानो आए, तो सब फायजा अली जो गानो बुधंदा सी, उन का पोए वरी तवाजो गानो भी हलाईंदा सी, सही आ। सो ही गानो डेडिकेट वेंदो अलाए कें फरमाइश कयो विसरी वियो, पर जिन जिन फायजा जे गाने जी फरमाइश कई उन्हनि सभिनी खे डेडिकेट आहे। बिल्कुल सी प्रोग्राम तमाजो पहिजो आहे व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तमा लगायो था खूबसूरत थियो पिया ऐं खूबसूरती खे वेलकम चओ पिया, ऐं जेकी जेकी माण्हू खूबसूरत थियण चाहिनि था उहे सभु इस्तेमाल कनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं व्हाइट एज जा प्रोडक्ट, समझी विया।

किशोर भाई बस ॾिसंदा वञो ॾिसंदा वञो. अच्छा एसन चादर चए वैसे ही क्रीम जी डबी ते छोकरे जो फोटो छो ना हूंदो. कुछ टाइम पहिरियां मूं बि इहा ॻाल्हि सोची हुई पर मूं थोरो ॾिठो त जेके काकनि वारियूं क्रीम हूंदा न ते काकनि जा फोटो हूंदा आहिनि. इट्स नॉट अ बिग डील समझो था. तारिक खान कहते हैं डी स्किन क्रीम व्हाइट एश आउट स्टैंडिंग रिजल्ट देती है. बिल्कुल जी तारिक खान आपने सही कहा है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स हो जितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलता जा रहा है. तो बाकी जो लोग लगाना चाहते हैं वो भी जल्दी से लगाई ठीक है कहीं देर ना हो जाए. और नजीर सिंधी कहते हैं हाय हेलो आरजे सिद्रा जी आप कैसी हैं. सो इज वेरी वेरी नाइस. आई एम नजीर सिंधी फ्रॉम डहर की. चलें जी आपने सबको सलाम दिए हैं सो वालेकुम अस्सलाम.

0: राज वफा मीर मुनवर भाई भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। सागर कतरी हमारे साथ मौजूद है, हेलो वेलकम मीर, आप हमारे साथ इंडिया से मौजूद हैं जी, आपको वेलकम करते हैं इंडिया पंजाब से, आप हमारे साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं सागर। और दुर्गरम सहू हमारे साथ हैं, अगर मैं आपका नाम सही नहीं रीड कर रही हूं तो माजरत करते हैं। दुर्गरम सहू आपको वेलकम करते हैं जी, आप इंडिया से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अनवर भाई कहते हैं कि हमने ख्याल नहीं रखा तो हम भी बड़े लगते हैं, यही बात है ना, मैं तो मतलब मुझे ता गाल के मनो सीरियस वठो चवन वठो मुझे तलाय कहते हो मुखे ता अलाए छो बार समझी करे मुझे गालन के हेडियो नहीं करे सनीदार न कना के वाला मस्याणो मणु है यार
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

ओके जनाब, सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकर मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि आप लोगों में जरा सी अवेयरनेस आ जाए, आप लोगों को पता चले कि भाईजान मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स मौजूद है और आपने कौन कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, बिल्कुल जनाब व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले बताया, लेकिन अब जरा मैं आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताऊंगी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती को कैसे बढ़ाने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी जाहिर सी बात है ये ऑल स्किन टाइप के लिए, और सबसे बड़ी बात के जनाब ये डॉक्टर की तस्दीक शुदा होने वाले प्रोडक्ट है, इनको जो है ना देखभाल के तैयार किया गया। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये पाकिस्तान में थोड़े से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीड्स मौजूद है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी उन प्रोडक्ट्स में से मौजूद है। अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को ये एहसास होगा कि आप बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत ही स्मूथ बनाएगा आपकी स्किन को, और साथ ही साथ इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ बात की जाए तो भाई आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है, आपके चेहरे पर दाने हो या फिर एक्नी के निशानात हो ये चीजें भी खत्म हो जाती है, आपके चेहरे पर जो आंखों के नीचे ये हल्के आ जाते हैं गड्ढे पड़ जाते हैं ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी, और साथ साथ आपकी स्किन स्मूथ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी और प्यारी प्यारी हो जाएगी। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि नाइट क्रीम है, रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे, और साथ में आप लोगों के लिए डी स्किन का फेस वॉश भी मौजूद है। यस, डी स्किन का फेस वॉश भी है, आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, सीरम इसके अंदर ऐड किया गया है और ये बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का फेस वॉश है। तो अगर आप फेस वॉश इस्तेमाल करना चाहते हैं कोई अच्छा, कोई मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, तो डी स्किन का फेस वॉश आप लोगों का इंतजार कर रहा है। तो अभी अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से नाम लेकर तलब कीजिए डी स्किन का फेस वॉश एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ये दोनों चीजें यहाँ परचेज करेंगे, साथ में इस्तेमाल करेंगे, साथ में लगाएंगे और साथ साथ जो है ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हासिल करेंगे। उसके अलावा अगर आप अभी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करेंगे जनाब 03151579 0595, ये नंबर आप डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल हो जाएं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के तमाम प्रोडक्ट्स। अगर आप ये थोड़ा सा जो है ना वो जरा पूछ करें अपने आसपास जाके करीबी जनरल स्टोर्स पर कि कहां कहां पर ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मिल रहे तो आप नंबर के ऊपर रब्ता एक मरतबा जरूर कीजिएगा। और महर इरफान सियाल साहब का ये नंबर है, उनको बताइए कि भाई आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स और आप कहां से हमारा शो सुनते हैं, आपके एरिया में नहीं मिल रहा है तो वो अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, या फिर आपको गाइड कर देंगे कि आपने कहां से जाकर परचेज करने हैं। बहुत ही काइंड और बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, तो आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको इजीली सारी बातें समझा देंगे। ठीक हो गया, और इसी के साथ साथ जो है ना मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि क्या कभी आपने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, और जब बनने की कोशिश की और आप फंस गए हैं किसी ऐसी सिचुएशन में फिर उसे बाहर निकले हैं तो कैसे निकले हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई मरतबा कि अगर हम किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं, खास करके जब हम ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं तो वो जो मूवमेंट होता है ना वो बड़ा कैची टाइप होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि भाई इसे अगर हम बाहर निकलेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई शर्मिंदा भी बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन चीजों को समझ नहीं पाते और कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। तो ओवर स्मार्ट पहली बात तो मत बना करें, और दूसरी बात बने तो जरा सोच समझ कर बने, सही है।

नौकरी जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी सैटरडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और सभी स्वीट सिस्टर्स को, टॉपिक ना नो कभी भी नहीं। वैसे फजीला की ये बात बड़ी अच्छी है कि आप लोग ये चीज भी नोट कर रहे होंगे कि फजीला जब भी मैसेज करती है तो उसमें एक ना दिन मेंशन करती है कि आज कौन सा दिन है। तो ये भी एक चीज है कि अगर समझ गए होंगे।

ओके सो फजीला की बात यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है हमारी प्यारी लुबना। कहती है कि कुछ चीजें सुकून देती हैं और तुम्हारा चेहरा और आवाज उसमें सबसे पहले आता है। फॉर यू सिडू जानी, थैंक यू वेरी मच मेरी प्यारी लुबना। और उसके अलावा हिंजी हमारे साथ अच्छा युसरा हमारा शो सुन रही है। युसरा ने सिर्फ अपना नाम लिखकर भेजा है, सो युसरा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और ये बाजी ही वारो गानो तो हलायो मरा तो कहजे लाए मरा न दोस्ता न प्यारा मुनवर होने की आवाज में गानो आ। इमरान अली बरोई आप हमें सुन रहे हैं लाड गाना से। ओके मरा तो कहजे लाए मतलब आज तो सैड गानो पर अलाए शुभ के न गाने तो खिल ही दिया। और नखा अलावा रसूलाबाद का आबिद हुसैन शंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। यो मत आगे सुबह बुधाई ठीक है। और गोट मोहम्मद तैयब थेबू का हाबी बोला थेबू कहते हैं वाइट एस जी लवली क्रीम शहर में आंदो आहे इस्तेमाल कयां पर रिजल्ट मिले तो पोए तवां के बुधाया। चलो चलो ठीक है ठीक है, असा इंतजार कदा से बाबा इतने वेठा आयो। गोट हाजी गुलाम खास के लिए लग झंडो मरी का कुर्बान खास के लिए ऐसे सगट मौजूद आए। भाजू मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो पया सुना भाई झंडो मरिया में मिले थी कौन है डी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर मिले थी कौन वाइट एज जा प्रोडक्ट यू तो मुझे बुधाए जो जी असा ताजे झंडो मरिया में भी अवेलेबल करायो।

हा बाबा माण्हू कूड़ ॻाल्हाईंदा वतन था सो कंहिंजी ॻाल्हि ते यकीन न कंदा कयो सही आहे और ज़हीर अब्बास हमारे साथ मौजूद है अच्छा ज़हीर अब्बास भाउ तव्हांजो मोहबतूं तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया उन खां अलावा मीर पीर बख्श टालपुर हमारे साथ मौजूद है तव्हां असांजो प्रोग्राम 88 तव्हां ॿुधो पिया जो मोहबतूं प्यारे भाउ जूं अच्छा एसन चलो इहो जेको आइडिया आहे न तव्हांजो इहो असां नेक्स्ट टाइम अप्लाई कंदासीं सही आहे फ़िलहाल जे लाइ त एतिरो ई अभी के लिए इतना ही अच्छा आदिल बिल्कुल आप गुड बॉय बन चुके हैं ऐसे ही गुड बॉय बने रहे बहुत अच्छी बात है हाणे तव्हां विणो था अला अर्ज मोहम्मद गोला हमारे साथ मौजूद है ज़िला जेका बाबा से तव्हांजो मोहबतूं प्रोग्राम ॿुधो पिया और सबा खान हमारे साथ सबा खान वालेकुम अस्सलाम एसन जादू जी हाणे ये नचो वरी न त जिन अची वेंदो माण्हुनि खे अगर टे चार ॾींहं सुकून हूंदो आहे न प्रोग्राम में पोइ वरी हिकु ॿिनि खे थोरो इंजन अची वेंदो आहे पोइ वरी थोरो माहौल ख़राब करण जी कोशिशि कंदा आहिनि पर बसि छा था चई सघूं

अच्छा ये हमारे साथ झुलरी का खालिक लाशारी कहते अदी झुलरी में क्रीम न पयो मिले चलो झुलरी में असा तवां जला जल्दी अवेलेबल कराए वठनासी पर भा तवां एकडो कम कजो तवां के जको नंबर बुधाय थी ना हाने उन नंबर ते तवां एको दफो राप्तो कजो उनन के चेजो त झुलरी में जका ना क्रीम नथी मिले त हु जी अवेलेबल कराए उनन के चो त असा रेडियो बुधना ता जो प्रोग्राम बुधनायो वाइट एसी क्रीम ए डी स्किन जी क्रीम असा जे झुलरी गोठ में भी अवेलेबल करायो सही आ सो तवां डायल करना 03-15-799-0595-03-15-799-0595 ही नंबर तव्हां डायल कंदा ने नंबर ते तव्हां राबतो करण खां पोइ पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए सघो था इन खां पोइ जेके भी प्रोडक्ट्स आहिनि सभु प्रोडक्ट तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल थींदा उतां पोइ तव्हां जेको आहे न वञी इज़ीली वठी सघो था सही आहे

बिल्कुल जी, असां कल भी होशियार हुआसीं, असां अॼु बि होशियार आहियूं, इनशाला सुभाणे बि होशियार हूंदा। हक़ीक़त आहे। हुन खां अलावा आदिल, आदिल बहुत शुक्रिया। और स्मार्टू गोपांग भी हमारे साथ मौजूद आहिनि जी, वेलकम वेलकम। और हुन खां अलावा हिदायतुल्लाह, तव्हां जूं बि मोहबतूं आहिनि, प्रोग्राम ॿुधो पियो असांजो। ऐं हीउ हिकिड़ो सॉन्ग लॻायो अथमि प्रोग्राम जो लास्ट ट्रेक आहे, समझो था। निदा कहती है, जिया कहां घूमे इतने टाइम से, वो बोलो कभी यहां भी चक्कर लगाओ। वैसे जिया मसरूफ आ लाइक थे।

0: इट्स 3 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: हम तो डूबे हैं सनम, अब सबको भी ले डूबेंगे. मंशाद केस में गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल और पिनके जो साफी जे सवाल ते जवाब. मंशाद केस में अदालती पेशी वक्त पिनके जो दाहूं मनपसंद बयान वठण जे लाइ पुलिस ते तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम. अनमोल और पिनकी चयो त बेगुनाह आहियां, कुझ बि नाहे कयो, सब कुछ अगूणो मुड़ुस कराए रहियो आहे. 22 जे पहिरीं लाहौर मां खयो वियो, 15 ॾींहं रखियो वियो, 5 ॾींहं पहिरीं हिते आंदो वियो. केस बि कूड़ा दाख़िल कया विया आहिनि. जे फ्लैट मां गिरफ़्तारी ॾेखारी वई मुंहिंजो नाहे. अगूणे मुड़ुस 3 महीना पहिरीं तलाक ॾिनी हुई, निकाह रजिस्टर थियल न हो.

0: ड्रीम मेयर शाह में उजण माइनर जी आबादगरन जो पानी खोड़ खिलाफ धरणो आबादगरन पारा लिंक रोड ते टारन के बाहर ही धरणो हया वियो। आबादगरन चयो तो उजण माइनर में केतरन ही सालन का पानी की फरहमी बंद है, जमीनू बंजर थी रहियो आहिनि, पानी पहुंचाए मसलो हल कयो वञे।
1: ठिकराटो के गोठ मुबारकपुर वासी चार पर बलोचिस्तान मागवा वारसन संदन बाजियाबी के लिए एहतजाज बुधाई मूजिब नौजवान साहब अली सिराज अली जमीर खान ए मुराद अली के नौशकी में अगवा कर चैनी मुगमिन के बाजियाब कराए गणती खत्म कई वे।
0: फैजगंज भरसा गोठ कोरकी हाजाना वासी नीगर गुम वारसन पारा अगवा जो शक जाहिर। वारसन मूजिब नीगर नईम पुट शाह मुराद हाजाणो बदीन का पुरसा नमूने गुम थी वो है। नीगर कराची वन घर निकतो तरस मोबाइल नंबर भी बंद है। शिकायत नीगर के अगवा कर वो है, खेस बिना देर बाजियाब कराए वे।
1: दरो में गोठाणन जो बासर की ज्यादत लंघ से कब्जे खिलाफ एहतजाज। गोठ अरब जावनी वासन जो बासर ते लंघ से कब्जो करे जमीन में शामिल करण जो इल्ज़ाम।
2: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर माखली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125257-86।
1: जी हा 2315-2575-786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड।

0: जो मुआइनो कंदा गायनाकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारिन जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: आई गायनाकोलॉजिस्ट आई औरतन जी बीमारिन जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफताब
0: आई डॉक्टर हमीदुल्लाह पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंजन 2 बजे का शाम 4 बजे ताई डॉक्टर जहूर अहमद मेमण दिमागी बीमारिन जो माहिर मंजन 12 बजे का 1 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदा
1: आई डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिजिशियन राचर जे दी मंजन 2 बजे का 3 बजे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नजद नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: क्या देख रहे हो,
5: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: पाणीअ जी खड़त वधाए छॾी. पंजाब सीजे ऐं तोसा पंजनि लिंक कैनालनि मां 10,000 क्यूसिक पाणी खणण लॻो. शदीद पाणीअ जी खोट खे मुंहुं ॾींदड़ सिंध में पाणीअ जो बहरान वधीक संगीन थी वियो. बिना इजाज़त पंजाब पारां खोलियल तकरारी लिंक कैनालनि जो कंहिं बि नोटिस न वरितो. सिंध जे आबादगारनि में ॻणितीअ जी लह छायल. सूबे में फसलनि जी पोखी मुतासिर थियण जो ख़दशो ज़ाहिरु.

हम तो डूबे हैं सनम, अब सबको ही ले डूबेंगे। मंशियात केस में गिरफ्तार कोकेन कोहेन अनमोल और पिनकी जो साफी जे सवाल ते जवाब। मंशियात केस में अदालती पेशी वक्त पिनकी जो दाहू मनपसंद बयान वठण जे लाइ पुलिस ते तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम। अनमोल और पिनकी चयो त बेगुनाह आहियां, कुझु बि नाहे कयो, सब कुझु अॻूणो मुड़ुस कराए रहियो आहे। 22 ॾींहं पहिरीं लाहौर मां खयो वियो, 15 ॾींहं रखियो वियो, 5 ॾींहं पहिरीं हिते आंदो वियो आहे। केस बि कूड़ा दाख़िल कया विया आहिनि। जंहिं फ्लैट मां गिरफ़्तारी ॾेखारी, अॻूणे मुड़ुस 3 महीना पहिरीं तलाक ॾिनी हुई, निचल न हो। मंशियात केस में गिरफ़्तार कोकेन कोहेन अनमोल उर्फ पिनकी कराची ऐं मलीर जी अदालत में पेश। पुलिस जो अदालत उनखे जांच लाइ पिनकीअ जो वधीक रिमांड ॾियण जी सदा। मलीर जी अदालत पिनकीअ जे रिमांड वारी सदा रद्द करे छॾी। खेसि जेल मोकिलण जो हुकुम। जांच आफ़िसर खां 14 ॾींहनि अंदर चालान तलब। पुलिस जो अदालती फ़ैसिले खे चैलेंज करण जो ऐलान। कराची जी अदालत पुलिस जी रिमांड वारी दरख़्वास्त ते महफ़ूज़ कयल फ़ैसिलो अञा जारी न कयो।

IMF बिजली ऐं गैस महांगी करण समेत नए माली साल जी बजट जे लाइ 11 शर्त रखी छॾिया। FBR जो टैक्स हदफ 15,267 अरब रुपया रखण जी तजवीज़ ॾेई छॾी। 215 अरब रुपियनि जा नवां टैक्स बि शामिल। नए माली साल जी बजट में लेवी ज़रिए बि अवाम खां 1727 अरब उगाड़ण जो मनसूबो बि शामिल। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं मुमलिकती वज़ीर तलाल चौधरी सां मिस्री वफ़द जी मुलाक़ात, बितरफ़ा लाॻापन समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही मुल्कनि जे घर वज़ारतुनि विच में सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। मोहसिन नक़वी चयो त मिस्री वफ़द जो दौरो बितरफ़े सहकार जा नवां दग ॻोल्हण में मददगार साबित थींदो। सिंध हुकूमत जो ॿारनि जी बचत जे लाइ लॻायल स्मार्ट लॉकडाउन ख़तम करण जो ऐलान। मार्केट्स मामूल मूजिब खुलियल हूंदियूं। सीनियर वज़ीर शहजील इनाम मेमन चयो आहे त सिंध हुकूमत कारोबारी बिरादरी अवाम खे वॾो रिलीफ ॾिनो आहे। ॾुखियुनि मुआशी हालतुनि में बि अवाम ऐं कारोबारी तबिके जे मुफ़ादनि जो तहफ़ुज़ कयो आहे। सिंध में मुख़्तलिफ़ तकरारनि दौरान औरत समेत 4 ॼणा क़तल, 4 ॼणा ज़ख़्मी। काज़ी अहमद में खोखर ऐं कंबो बिरादरी जी बिंदुरियुनि में मसवाड़ वारी जाइ तां जेड़ो मंज़ूर कंबो क़तल, ॿिनि औरतुनि समेत 4 ॼणा ज़ख़्मी। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि पारां लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ ख़ुशमोहम्मद पहर में ॻोठाणो रफ़ीक पहर क़तल थी वियो। कानपुर वेझो घर मां चोरीअ दौरान मज़ामत हथियारबंदनि जी फायरिंग, घर ते आणी समात मरियम ख़ातून क़तल थी वई। दोदापुर वेझो अणॼातल जवाबदारनि लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी हिकु ॼणे खे क़तल करे छॾियो। ॻोठ ख़ुशमोहम्मद पहर में रफ़ीक पहर खे लठियूं ऐं कुहाड़ियूं हणी क़तल कयो वियो।

0: ट्रिब बेहर शाह में उजण माइनर के आबादगारन जो पानी की खोट खिलाफ धरणो आबादगारन पारा लिंक रोड से टायरन के बाहे दई धरणो हयो वियो। आबादगारन चयो है तो उजण माइनर में केतरन ही सालन का पानी की फराहमी बंद है, जमीनू बंजर थी रही है, पानी पहुंचाए मसालो हल कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम।

0: नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: It's 4:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं GFM 88 Network, सिंध की आवाज.
4: क्या देख रहे हो?
5: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
4: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें. 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है. अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं. तो भाई साहब क्या समझे.
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
7: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
8: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
7: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
8: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे.
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392.
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
7: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था. जंहिं में
8: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था. जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा.
7: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
8: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं. डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा.
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
7: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली.

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो जी एफ

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713023920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
6: सामीन और नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे आप ज़रूर पिलाइएगा।
1: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
4: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
6: कैश किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पक्यू छितू लगरा लाए खुश खबरी छा अमा चाहो था अमा जे घरन जो छितू पक्यू हुजन त कैश किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगरा लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
8: सुनते रहो GFM 90.4

0: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खुशखबरी साफ ए शिफा पानी सेहतमंद जिंदगी की जमानत।
2: अवाजे पेंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल का खिदमत करे रहे है। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पानी की बोतल
2: 6 लीटर पानी की बोतल ए बियो पानी जो बोतलू मुतारिफ कराए रो है।
1: उनका अलावा असा रिफल की सहूलत पिण सस्ते अगते मौजूद आहे।
2: अवां जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
1: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार शादी ऐं बिन तकरीबात लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वट मातली शहर वासिल लाए होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुन्यातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जंहिंमें
2: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने बिया मुख़्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वञन था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंद 2 वॻे खां रात 8 वॻे ताईं मरीज़न जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतन जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़न जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: इट्स 5 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जीए सखर एफएम 88 जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम लीगल कॉर्नर साण करे आऊं आहां अहां जो पैंजो मेज़बान बाबर शेख। इन्हीं उम्मीदों से अहां बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा। अल्लाह पाक अहां सभिनी ते पैंजी रहमतुन जा साया बरकरार रखे। समन प्रोग्राम लीगल कॉर्नर जो अहां हर हफ्ते बुधंदा आयो, लीगल कॉर्नर प्रोग्राम में लीगल अहां के नॉलेज मिलंदी आए तमाम घणी। असा गड स्टूडियोज में लीगल एक्सपर्ट मौजूद हुंदा आहिनि। सो लीगल एक्सपर्ट के तमाम बिल्कुल ॾिसी रहा आहियो स्क्रीन ते। उन्हनि जो जेको आहे इंट्रोडक्शन कराइण खां पहिरियां तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां त असांजे अॼु जे प्रोग्राम जो टॉपिक आहे सेक्शन 489 एफ पीपीसी, जंहिंमें चेक बाउंस ऐं उन ते कानूनी कार्रवाई कहिड़ी थी सघे थी। इन टॉपिक सां रेलिवेंट असीं अॼु गुफ़्तगू कंदासीं। इन टॉपिक सां रेलिवेंट तव्हांखे तमामु घणी अॼु नॉलेज मिलण वारी आहे। अक्सर तव्हां ॾिठो हूंदो त चेक बाउंस जॾहिं थिए पियो त उन में जॾहिं डिसऑनेस्टी साबित थी वञे त उन ते जेको आहे त अंडर दिस सेक्शन 3 सालनि ताईं उन्हनि खे जेल बि थी सघे थी ऐं इन सां गॾोगॾु फाइन बि उन ते थी सघे थी। हाणे कहिड़ी सिचुएशन में चेक बाउंस में जेको आहे त इहो सेक्शन अचे पियो ऐं उन ते तव्हां इहा कार्रवाई कीअं कराए सघो पिया, ऐं फॉर इंस्टेंस तव्हां खां जेको आहे त चेक कंहिंखे मिली वञे पियो ऐं डिसऑनेस्टी साबित न पई थिए, अॻिलो तव्हांखे जेको आहे त प्रेशर विझी रहियो आहे, इलीगल तरीक़े सां तव्हां खां पेमेंट वठी रहियो आहे, त उन मुतलिक सॼी अॼु जेको आहे नॉलेज तव्हांखे मिलंदी ऐं तव्हांजो कॉन्सेप्ट बि तक़रीबन क्लियर थी वेंदो। स्टूडियोज़ में एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब मौजूदु आहिनि, एडवोकेट हाई कोर्ट आहिनि ऐं 10 सालनि खां वठी तक़रीबन एडवोकेसी सां वाबस्ता बि आहिनि, लेक्चरार आहिनि लॉ कॉलेज में, एज वेल एज तमामु घणा इन्हनि जा कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स बि जेके अंदरि क्वालिफाई थियल आहिनि, यानी नॉलेज इन्हनि खे तमामु सुठी आहे लॉ जे मुतालिक़, जेका असांखे हर वीक असांखे ॾींदा आहिनि ऐं असांजी नॉलेज में यकीन इज़ाफ़ो कंदा आहिनि। सो शहबाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्टूडियोज़।
1: वालेकुम सलाम बाबर।
0: शहबाज़ साहब, अॼु जो असांजो टॉपिक जीअं आहे चेक बाउंस, अक्सर अव्हांखे ख़बर आहे त चेक जंहिंखे ख़बर न हूंदी आहे खणी उहो त ईअं पर्ची टाइप ॾेई छॾींदो आहे ऐं जॾहिं हिन सेक्शन खे जॾहिं हू ॾिसंदो ऐं उन ते ॾिसे पियो त सज़ा इहा कीअं थी सघे पई, त मां सम्झा पियो चेक ॾियण खां पहिरियां उहो ज़रूरु सोचींदो त यार चेक ॾियणु घुर्जे या न। सो सभ खां पहिरियां असां चाहींदासीं त तव्हां हिन सेक्शन ते थोरो ओवरव्यू ॾियो त इन जी लीगल डेफिनेशन आहे छा।
1: सेक्शन 489F
0: जी,
1: डिसऑनेस्टली इशूइंग चेक, जेके असां चवंदो चेक बाउंस। बिफोर जंपिंग ग्रेवली इन टू दिस टॉपिक, मां हिकिड़ो कुझु कॉन्सेप्ट आहिनि उहे क्लियर कंदुमि जेके असांजे ॿुधण वारा आहिनि ॾिसण वारा आहिनि, त 3 खां 4 ॻाल्हियूं आहिनि जेकी असां हिते समुझाइण लाज़मी आहिनि, त हुन खां पोइ असांखे सम्झ में ईंदो त चेक बाउंस कहिड़ी सूरत में थी सघे थो। सभ खां पहिरियों जेको पॉइंट आहे चेक बाउंस खां अॻु में, त असांखे इहा ख़बर हुजे त चेक ऑनर कीअं थींदो आहे ऐं चेक डिसऑनर
0: कीअं थींदो आहे।
1: चेक ऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की वेन अ चेक इज़ बींग प्रेज़ेंटेड बिफोर द बैंक एंड द बैंक रिसीव्स इट एंड देयर ओन विड्रॉ द कैशिस टू द पर्सन टू हूम द चेक इज़ बीन गिवन। ठीकु आहे, त हिकिड़ो माण्हू वियो जेके चेक इशू थियो, उहो बैंक वियो, बैंक हुनखे ऑनर ॾिनो, ठीकु आहे, हुनजी तसदीक कई, तसदीक करण खां पोइ हुनखे जेको आहे न अमाउंट कढी ॾेई छॾियो। डिसऑनर जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की चेक जॾहिं ॾिनो वियो, वेन द चेक वॉज़ गिवन,

0: अल्टरेशन चवंदा या त अकाउंट सीज त नाहे, टियों ट्रांसेक्शन टाइमली रुकी वई आहे या ट्रांसेक्शन रुकाई वई आहे। सो कुझु ॻाल्हियूं हुन उनखे ॾिसी करे चेक खे रिटर्न कयो वेंदो, उन रिटर्न ऑफ चेक खे चवंदो आहे डिसऑनर ऑफ चेक। ऐं ॿियो इन खां अलावा हटी करे टे शयूं ॿी बियूं आहिनि जेके सम्झण लाज़मी आहिनि इन चेक वारे इशू में। सभु खां पहिरियों असांखे इहो ख़बर हुजे त ड्रावर केरु आहे, ड्रावी केरु आहे ऐं पेई केरु आहे। तव्हां अगरि चेक खणी ॾिसंदो त हमेशा चेक जे मथो मथो लिखियलु हूंदो आहे पेई, उन जे अॻियां लिखियलु हूंदो आहे बीअरर। पेई उहो माण्हू आहे जंहिंजे नाले ते चेक इज़ बींग इशूड, ठीकु आहे, जेको चेक विड्रॉ कराए सघे थो। ड्रावर उहो हूंदो आहे द वन द पर्सन हू इशूज़ द चेक, जेको चेक इशू कंदो फॉर द पर्पज़ ऑफ कोई भी ट्रांसेक्शन अगरि हुन कई आहे या हुन को कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हुनजी रहे थी पई या को प्रोमिस हुन कयो आहे या रीपेमेंट ऑफ लोन आहे, त उहो हिकिड़ो स्पेसिफिक अमाउंट लिखी ॾींदो जेको पेई वञी करे हुनखे विड्रॉ कराईंदो। हाणे किथे विड्रॉ कराईंदो, हुनखे चइबो आहे ड्रावी। ड्रावी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे, हुनखे अमूमन असां हुनखे बैंक चवंदा आहियूं, द प्लेस वेयर द चेक इज़ बींग ड्रॉ या फ्रॉम द पेमेंट इज़ बींग टेकन, उनखे असां छा चवंदा
1: आहियूं
0: बैंक ड्रावी चवंदा आहियूं, ठीकु आहे। इहे कॉन्सेप्ट मिलाए करे असां छा कंदा आहियूं त इहो कॉन्सेप्ट मिलाए करे इहे सॼे कॉन्सेप्ट ते असां चवंदा आहियूं इहो चेक सां रिलेटेड आहे ऐं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सां रिलेटेड आहे। ऐं अगरि इन में बदनीयती अची वञे ऐं उनजो मिसयूज़ थी वञे, उन कॉन्सेप्ट ते इहो पूरो सेक्शन बीठल आहे 489F, डिसऑनेस्टली इशूइंग द चेक, चेक बाउंस थी वञे।
1: अच्छा, मतिलब जेको आहे बदनीयती साबित थिए तॾहिं ही सेक्शन थिए पियो, अदरवाइज़
0: बदनीयती ईअं आहे बाबा। त मां रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी हिकड़ी अथॉरिटी पढ़ां पियो, उनमें टे इनग्रीडियंट्स इम्पोर्टेंट आहिनि डिफाइन करण जे लाइ त वाकई उनमें जेको आहे न चेक जेको बाउंस थियो आहे उनमें टे शयूं अगरि लाज़मी आहिनि त चेक डिसऑनेस्टली बाउंस थियो आहे। सपोज सभ खां पहिरियों इशू, उहो कहिड़े पर्पज़ लाइ इशू थियो आहे, कंहिं इशू कयो आहे, ठीकु आहे। ॿियो उन में ॾिठो वेंदो त जे पर्पज़ सां इशू कयो आहे उनजी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन्स छा आहिनि, ठीक आहे, छा उहो प्रोमिस जी सूरत में ॾिनो वियो आहे, रीपेमेंट ऑफ लोन जी सूरत में ॾिनो वियो आहे, हुनजी लीगल कैपेसिटी छा आहे, उहा कंहिं एग्रीमेंट जे पॉइंट ऑफ व्यू सां ॾिनो वियो आहे। टियों पर्पज़ इहो आहे त चेक इशू करण जे टाइम, चेक इशू करण जे टाइम छा उन में डिसऑनेस्टी शामिल हुई। अगरि डिसऑनेस्टी शामिल हुई त जेको आहे न चेक डिसऑनर या हुनखे असां चवंदो 489F डिसऑनेस्टली इशूइंग द
1: चेक,
0: माज़रत सां डिसऑनेस्टली इशूइंग द चेक।
1: ऑल राइट, सो लिसनर्स, असां तव्हांजो फीडबैक बि प्रोग्राम में शामिल करे रहिया आहियूं ऐं गॾो गॾु टॉपिक ते जेको आहे त असीं एडवोकेट शहबाज़ हफ़ीज़ साहब सां गुफ़्तगु करे रहिया आहियूं। शहबाज़ साहब, जीअं अवां ॻाल्हि कई मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि त रीज़न्स थी सघनि पिया चेक जेको आहे डिसऑनर थिए पियो, हुन में हिकिड़ो रीज़न इनसफिशियंट बैलेंस बि थिए पियो।
0: जी जी,
1: फॉर एक्सटेंस अगरि ॻाल्हि कयूं कंहिं लख रुपए जो चेक कंहिंखे ॾेई छॾियो, ठीकु आहे, ऐं कोई बि बैंक चार्जिस कॾहिं कॾहिं कटिजी वञनि पिया, मंथली तव्हांखे ख़बर आहे त डेटा या बंडल एक्टिव हूंदा आहिनि, पोइ उहो जेको आहे न इनसफिशियंट बैलेंस जी वजह सां बि जेको आहे न चेक रिटर्न हलियो वेंदो आहे, त छा इहो अचे पियो डिसऑनेस्टली इन में इन सेक्शन जे अंदर?
0: बदनीयती डिसऑनेस्ट, मतलबु अगरि बदनीयती खे सभु खां पहिरियों डिफाइन था कयूं कि सिचुएशन छा हुई। हिकिड़ो माण्हू मुआदो थो करे, कोई बि हिकिड़ो लीगल एग्रीमेंट थो करे कि मां तव्हां खां गाॾी हिकिड़ी मोटरसाइकिल आहे जेकी तव्हां खां मां 2 लख रुपए में वठां हूंदो, फॉर एग्ज़ाम्पल। हाणे हुन 1 लख जो तव्हांखे नेट कैश ॾेई छॾियो, जेको ॿियो चेक आहे हुन छा कयो, बकाया जेकी पेमेंट आहे उहा चेक जी सूरत में तव्हांखे हुन हैंड ओवर कयूं, त हिन ई महीने जे अंदरि 15-15 ॾींहं जे डिफरेंस सां तव्हां 2 डिफरेंट चेक डिफरेंट हुन स्पेसिफिक डेट ते वञी करे तव्हां विड्रॉ कराए सघो था। 1 लख रुपियो हुन ॾेई छॾियो, ट्रांसेक्शन थी वई, कंसीडरेशन थी वई, कारण कंसीडरेशन में हिकिड़ी टर्म तव्हां पढ़ी आहे, क्विड पूरो कयो,
1: हिन
0: मतिलबु रिटर्न ऑफ समथिंग। रिटर्न ऑफ समथिंग में छा आहे, तव्हां गाॾी हैंड ओवर करे छॾी, हाणे तव्हांजे लाइ कंसीडरेशन अमाउंट आहे, हिकिड़ो हाफ अमाउंट मिलियो, हाफ अमाउंट रहे थो, हाणे 50,000 जा हुन ॿ चेक तव्हांखे ॾेई छॾिया। फॉर सपोज हुन तव्हांखे 1 लख रुपियो ॾिनो, 1 लख रुपए खां पोइ हुन पहिरीं ट्रांसेक्शन थ्रू कराए छॾी जंहिंमें तव्हां कैश विड्रॉ करे छॾियो, लेटर ऑन कुझु रीज़न्स जे करे या कुझु एमरजेंसी जे करे हुन पैसा अमाउंट विड्रॉ कराए छॾिया, ठीकु आहे। हुन में हुन बदनीयती ज़ाहिर नथी थिए, छो त पहिरियों त हुन तव्हांखे 1 लख रुपए ते स्पॉट ॾिनो, वरी हुन खां पोइ जेको तव्हां पहिरियों जेको चेक आहे जॾहिं तव्हां विड्रॉ करायो त उहो बि हुन में अमाउंट अवेलेबल हुयो,
1: ऐं
0: उहो तव्हांखे सफिशियंट रीज़न ॾिए थो त मां तव्हांखे छोकी कुझु अमाउंट कढाए वरितो आहे, अमाउंट कुझु मां 10,000, 15,000, 20,000 कढाए छॾिया आहिनि, बाक़ी जेको आहे न मां तव्हांखे या त हिन चेक जी सूरत में मां हिन में विझराए छॾंदुमि त बाद में कढाए छॾो। त हिते हाणे डिसऑनेस्टी कॾहिं थी क्रिएट थिए तव्हांखां।

0: लख रुपयो तव्हांखे ॾिनई, तव्हांखे गाॾी वरितई, जीअं तव्हां पहिरीं पेमेंट लाइ चेक खे विड्रॉ कराइण लाइ वियो, उहो थी वियो तव्हांजो
1: डिसऑनर थी वियो।
0: ठीकु, तव्हां सम्झो, ठीकु आहे, इट्स ओके। तव्हां हुनखे ॿुधायो त भई मुंहिंजो चेक, हुन चयो ठीकु आहे साईं, मां पैसा विझराए थो छॾां। तव्हां वरी ॿीहर वियो, वरी डिसऑनर थी वियो, वरी तव्हां जेको ॿियो चेक तव्हांखे ॾिनई, पर तव्हां उन लाइ बि वियो त उहो बि डिसऑनर थी वियो। त नाओ द इंटेंशन शुरू खां ई वठी हिननि जो बदनीयती आहे, शुरू खां ई वठी क्रिमिनल इंटेंशन हुन में ज़ाहिर थो थिए त हिननि जेको असांखे चेक जेको इशू कयो आहे उन में डिसऑनेस्टी शामिल आहे।
1: ओके, मतिलब डिसऑनेस्टी जेका आहे त उहा जॾहिं ज़ाहिर थिए त अंडर दिस सेक्शन जेको आहे करे सघूं
0: पिया।
1: ओके, सो कुझु फीडबैक बि आहे जेको मां प्रोग्रामिंग में शामिल करण वारो आहियां। शेबा साहब, स्क्रीन ते बि काफ़ी सारा मैसेजिस अचनि पिया जेके मां पहिरियों बि अनाउंस करे चुको आहियां त सॼा त शामिल न थी सघंदा आहिनि, टाइम घटि हूंदो आहे, हिन जे लाइ असां थोरा थोरा शामिल कंदासीं। सो हिकिड़ो वॉइस नोट आहे जेको व्हाट्सएप ते असांखे रिसीव थियो आहे ऐं मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त तव्हां बि असांखे लिसनर्स व्हाट्सएप ते ज्वाइन करे सघो था। असांजो नंबर आहे 03000113488। सो हिकिड़ो ही वॉइस नोट ऐं ही छा पिया चवनि, अचो ॿुधूं पिया।
2: अस्सलामुअलैकुम सर, मां नाम ज़ुबैर अहमद। सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे, अगर हमें कोई फेक अकाउंट या क्लोज अकाउंट का चेक दे दे तो उसकी पनिशमेंट क्या बनती है, उसे सजा क्या मिलेगी, तो प्लीज सर हमें गाइड कीजिएगा।
1: अच्छा शेबा साहब, हिननि त फेक अकाउंट जी ॻाल्हि कई आहे, ईअं अक्सर ॾिठा आहिनि मूं बि माण्हू काफ़ी, हुन वटि टे चार चेक बुक्स हूंदियूं आहिनि, पोइ उन मां हुनखे जस्ट ख़बर इहा उहो जेको आहे त हासिल करणु चाहींदा त असांखे जस्ट टाइम खपे। जीअं तव्हां अॻाणी ॻाल्हि कई त चेक बैलेंस न हूंदो आहे, पोइ हुन ॾे फोन कंदो आहे, चवंदा ठीकु आहे मां बैलेंस विझिरायां थो, हाणे हिन विच में घणा ॾींहं हुनखे मिली विया।
0: बिल्कुलु,
1: छा इहो साबित करण लाइ काफ़ी न आहे त इहा डिसऑनेस्टी आहे, उहो ॾींहं पियो हासिल करणु चाहे जेको क्लियर असां सां ॻाल्हि न पियो करे।
0: सो वापसि हुन टॉपिक ते अचूं था जिते छॾियोसीं, त पहिरियों त तव्हां इंटेंशन ज़ाहिर कंदो, अगरि हिकिड़ी फाइनेंशियल ट्रांसेक्शन थिए थी पई, उहा कंटीन्यूअस आहे, ऑल ऑफ सडन किथे ब्रेक थी थी वञे, कुझु लीगल मामला जे करे या फाइनेंशियल इशूज़ जे करे उहो तव्हांखे हिकिड़ी पेमेंट न ॾिनो आहे, पर असां हुनजी जेकी प्रीवियस इंटेंशन आहे उनखे ज़रूर ॾिसंदासीं त प्रीवियसली हुन असांखे जेकी रक़म आहे उहा टाइम ते पेमेंट कंदो आयो आहे। पर जेकॾहिं इंटेंशन शुरू खां ई वठी करे इंटेंशन बदनीयती ते शामिल आहे त उहो डिसऑनेस्टी में हलियो थो वञे, जंहिंजे लाइ असांजे लाइ इहो पूरो जो पूरो सेक्शन अवेलेबल आहे। हाणे एज़ पर जीअं तव्हांजो सवाल आयो त फेक अकाउंट या जेको आहे न फेक अकाउंट आहे या जेको
1: आहे
0: चेक जेको आहे न उहो बि जेको आहे न जाली चेक थो असांखे ॾिए, हाणे इहो हिकु न इहो ॿ खां टे सवाल आहिनि।
1: ओके,
0: सभ खां पहिरियों त हो फोर्जरी क्रिएट करे थो पियो। फोर्जरी जो मक़सदु इहो हूंदो आहे की कंहिं बि माण्हू खे डिसीव करण, कुझु अहिड़ो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करे जेको हुन जी या त ज़ातियात खे अटैक करे या त हुनखे नुक़सान पुॼाए, हिकिड़ो फोर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करणु, ठीकु आहे। ॿियो फेक अकाउंट, फेक अकाउंट बि माना ईअं सम्झो त चीटिंग में थो हलियो वञे, छो त डिसऑनेस्टी शामिल आहे। डिसऑनेस्टली को माण्हू कंहिंखे फेक अकाउंट या जेको आहे न फेक चेक हैंड ओवर करे छॾे, उन खां पोइ हे बि सेक्शन हुन जे मथां लागू थो थी वञे त उन जेको चेक ॾिनो आहे उहो बि डिसऑनेस्टी सां ॾिनो आहे। सो इन्हनि टिन्हनि सूरत में हिकु न बल्कि टे सेक्शन जे मथां लागू था थियनि, चीटिंग जो बि सेक्शन लागू थो थी वञे, फोर्जरी जो बि सेक्शन लागू थो थी वञे ऐं 489F जो सेक्शन बि लागू थो थी वञे, ऐं इन टिन्हनि में तव्हां हिकिड़ी शइ कॉमन ॾिसंदो, दैट इज़ अ डिसऑनेस्टली।
1: ओके,
0: डिसऑनेस्टी तव्हांखे टिन्हनि शयुनि में कॉमन नज़र ईंदी जंहिंजो पर्पज़ इहो आहे टू चीट समवन।
1: असां कीअं डिफ्रेंशिएट कयूं 420 खे ऐं 489F खे?
0: 480 असल में आहे त शइ डिफरेंट आहे, माना 420 आहे चीटिंग, डिसीव करणु, कंहिंखे धोखो ॾियणु। हिन में छा आहे त हिन में असां इंटेंशन ॾिसंदाऊं, चीटिंग में इंटेंशन फ्रॉम द स्टार्टिंग खां धोखो ई आहे। अ पर्सन हू इंटेंशनली इंड्यूस समवन टू बिलीव दैट दैट थिंग इज़ अ ट्रू, हुनखे बिलीव थो कराए ऐं उन खां उहा शइ गेन थो करे, इनखे असां चवंदा आहियूं की इलीगल लॉस एन इलीगल गेन। इलीगल लॉस कंहिंजे लाइ आहे, जंहिंजी शइ आहे हुनखे त लॉस थी वियो, इलीगल गेन कंहिंजे लाइ आहे जंहिंखां हुन उहा शइ इलीगली तरीक़े सां वापसि वञा इलीगल तरीक़े सां एडॉप्ट कई आहे, वरिती हुन खां गेन कई, हुन जे लाइ छा थींदो इलीगल गेन। सो चीटिंग में डिसऑनेस्टी शुरू में ई इन्वॉल्व आहे, की हुनजो इंटेंशनली जेको इंसेप्शन खां जेको पर्पज़ आहे उहो चीटिंग ई आहे। ईअं ई अगरि तव्हां डिसऑनेस्टी में अचो था, हिते डिपेंड करे थो त चेक कहिड़ी ट्रांसेक्शन में, कहिड़े प्रोमिस में, कहिड़ी सूरत में, कहिड़ी ऑब्लीगेशन्स में ॾिनो वियो आहे। अगरि शुरू में बदनीयती नाहे, पेमेंट्स रवां आहे, पेमेंट्स ट्रांसेक्शन फ्रीक्वेंटली थींदी थी अचनि ऐं कुझु फाइनेंशियल इश्यूज़ जे करे उहो कंप्लीट न करे सघियो आहे, त असां हुनखे बदनीयती न चवंदासीं, छो की हुनजो हिकिड़ो सॉलिड रीज़न हूंदो। अगरि हुनजी शुरू खां ई वठी ट्रांसेक्शन रुकियल आहे ऐं शइ ट्रांसफर थी वई आहे, हाणे उहो चए थो उहो तव्हांखे शइ नथो ॾे, न उहा हुन एम्बिट में ईंदी त हुन डिसऑनेस्टली सां इहा शइ तव्हांखे इशू कई आहे। इन जो मां हिकिड़ो वॾो मिसाल ॾियां, हिकिड़ी तमामु बहितरीन मुंहिंजी फेवरेट हिकिड़ी मूवी आहे, टॉम हैंक्स जी ऐं लिनाडो डिकैप्रियो जी हिकिड़ी वॾी बहितरीन मूवी आहे, जेकी टोटली इन सिस्टम ते ठहियल आहे। उन मूवी जो नालो आहे कैच मी इफ यू कैन।
1: ओके,
0: ऑस्कर में वई नॉमिनेटेड थी, त उन में सॼो जेको बैंकिंग सिस्टम आहे कि उन में फ्रॉडुलेंटली कोई इंसान फेक चेक जे थ्रू बिलीनियर थी सघे थो पियो, छो कि 1960s में अर्ली 70s में एॾी माना डिजिटलाइज़ेशन न हुई त जेकी जंहिंजे थ्रू रोकथाम करे सघिजे, त दैट मैन यूज़िंग द फेक चेक ऐं फोर्स डॉक्यूमेंट्स टू गेट सो मेनी ट्रांसेक्शन ऐं बिकम्स बिलीनियर। उहो उन टाइम ज़माने जो जेको आहे न, ही बिकेम बिलीनियर एट दैट टाइम। रियल स्टोरी ते हिकिड़ी मूवी आहे, त उहा सॼी रिलेटेड ई इन चेक सां आहे।
1: सो
0: अगरि कंहिंखे अगरि सपोज अगरि काई मूवी समझणी आहे, अगरि बैग चेक सां रिलेटेड कोई इशू समझण त उहो मूवी ॾिसी सघे थो। उन में सॼो आहे फोर्जरी ते।
1: मूवी लवर घणा आहियो,
0: ॾिसो न, मूवीज़ मां बि असांखे इंस्पिरेशन मिलंदी, मूवीज़ मां बि असांखे नॉलेज मिलंदी आहे। सो अगरि मूवी सुठी आहे, ऑस्कर में नॉमिनेटेड आहे ऐं स्टोरी सुठी आहे, त देर इज़ अ छा चवंदा आहिनि, यू कैन सी इफ यू आर फॉर योर एंटरटेनमेंट।
1: सो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो वक़्तु थियण वारो आहे, असां ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं, पोइ मोटींदासीं ऐं सिक्योरिटी चेक ते पाण ॻाल्हाईंदासीं, ऐं सिक्योरिटी चेक खां अलावा वरी असां FIR ते ॻाल्हाईंदासीं, छाकाणि त FIR तव्हांखे ख़बर आहे सुथरी पाण वटि थींदी कोन्हे, त उन खां पहिरियां ई मामला जेके आहिनि उहे हल करणा पवंदा आहिनि। इहो बहितर आहे FIR ते प्रेशर ॾियण जे लाइ खणी, जीअं ADR थी सघे। सो इन टॉपिक ते वधीक असां ॻाल्हाईंदासीं, तव्हां बि पंहिंजो फीडबैक ॾेई सघंदव। असांजो नंबर आहे 0300-1134-88। सो लीगल कॉर्नर प्रोग्राम में असां सां गॾु रहिजो पूरे 6 वॻे ताईं।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह, वल्द हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदीन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
5: इसमें क्या राज है, उसमें क्या राज है, अभी पता लगाता हूँ।
6: एक दिन इन छोकरे जो जासूसी मारांदी असांखे,
5: अभी पता लगाता हूँ इसमें क्या राज है। जासूस जासूस
7: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
6: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो
7: बाबा, इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
8: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तनि खां बचा। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
9: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
10: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें। और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
11: बैंक हबीब, रिश्ता भरोसे का।
12: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
13: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
12: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
13: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
12: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
13: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
12: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
13: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
12: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
13: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
12: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
13: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
12: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
13: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
12: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीत के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: सामीन नाजरीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
6: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सो वंस अगेन भली कहा लिसनर्स, प्रोग्राम लीगल कॉर्नर अव बुधी रहा आयो बाबर शेख आए अवं सा गड प्रोग्राम में मूसा गड स्टूडियोज में मौजूद आन एडवोकेट शहबाज हफीज साहब असो जो अज जो टॉपिक है 489F सेक्शन पीपीसी डिसऑनर ऑफ चेक एंड इनते कड़ी लीगल जी इत कार्रवाई थी सके थी। शहबाज साहब ब्रेक से वन पे पा इन डिस्कस कर रहा हुआ मु तक तो सिक्योरिटी चेक से पा गासी उन ही तरफ हलन का पेरा अवाने जो पर्पस बुदाओ तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन।
1: इन सेक्शन जो पर्पस पाकिस्तान पिनल कोड में एड करण जो यो हो तो जी भी बैंकिंग से रिलेटेड जी भी फ्रॉड अन या चेक से जी फोर्जरी या चेक जी या जी बिजनेस ट्रांसैक्शन थे बिटवीन द बायर एंड द सेलर या ट्रेडर्स एंड सेलर्स के विच में जो भी मिसयूज थे तो बैंकिंग सिस्टम में उनके रोकने के लिए यो सेक्शन इन में एड किया वो जी इन निजाम के सुठो कर सकजे जो इन कार्रवाई का बची सकजे। मेन पर्पज इन जो ही
0: अच्छा मेन पर्पज हाँ असू पा अगर सिक्योरिटी चेक से कदी कदी थे पो जैसे सिक्योरिटी चेक के दिनों वे पो बगैर कोई लिख मतलब चेक के बैक साइड आऊँ तो लिखण घुर्जे तो ये सिक्योरिटी बेस से चेक दिनों वो वो डिसऑनर थे पो उनते जो है की कार्रवाई थी सके पई या जैसे सिक्योरिटी चेक दिनो आए वो जो है डिसऑनर थी सके तो उनते एफआईआर भी थी सके थी या उनते नथी थी सके।
1: हाँ डिपेंड करे तो एज ए सिक्योरिटी पर्पस दिनो वो चेक वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट थी या अगर जेकर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट नथी या तो सिक्योरिटी पर्पज लाइ जो डिनल चेक आ वो ऑटोमेटिकली डिसऑनर जी उनमें जिम्मेरे में नहीं एबिट में नहीं अगर ट्रांसैक्शन थी वही या कम्युनिकेशन थी वही या प्रोमिस जी प्रोमिस्ड जी कंडीशन्स वे पूरी थी वही उन पर कॉन्ट्रेक्ट आ चेक इशू थो भले चाहे वो सिक्योरिटी पर्पज लाइ छो इशू थो हो पर उनमें डिसऑनेस्टी शामिल आ तो सब का पे उनमें यो डो वो त कॉन्ट्रेक्ट जी जो लाइबिलिटी आ केंजे मथों आ इशू कें कड़े पर्पज लाइ इशू थो रिसेप्ट्स डिठी वेंदू अगर उनमें उसे शूं शामिल तो वह डिसऑनेस्टी आ अगर उनमें उसे शामिल नाहन त ऑटोमेटिक जो उनमें यह डिसऑनेस्टली और डिसऑनेस्टी शामिल नथी थे चेक बाउंस।
0: अच्छा इनते फीडबैक भी आयो है वो मां शामिल करण का पहिरां एकरो अवां सां पंहिंजो शेयर कंदो सवाल मुझे जहन में अचे पियो त अक्सर एक दफा बल्कि कई दफा ये थी चुको आ त एकरो चेक जो हुंदो आ एकड़ी पार्टी जो कंहिंखे डिनल हुंदो आ वो फॉरवर्ड थींदो रहंदो आ वो थर्ड पर्सन ते पहुतो फोर्थ पर्सन ते पहुतो उन जी पेमेंट क्लियर न थी वो वनी करे चेक जो बाउंस कराए पियो ए चेक जे नाले ते आ उन ते बाउंस उन जो डिसऑनर थी पियो तो छा उन ते एफआईआर थींदी हो तो उन पार्टी के सुणाणे ही कोन चेक फॉरवर्ड तो थींदो रहे।
1: यो दिसो ना मां ताके बुधायम त चेक देण खाग में पहिरी गाल त कदे भी ब्लैंक चेक दीजे ही ना
0: ठीक है
1: चेक में डेट
0: लिखाई
1: टाइटल लाजमी है कंहिं जे नाले ते वञे तो बैंक जो नालो वञे तो अगर मिसाल तां को कॉन्ट्रेक्ट क्रिएट था कयो पिया उन कॉन्ट्रेक्ट में तां लिखत वठो कोई भी कॉन्ट्रेक्ट लिखत का सिवा तो पूरा ही ना है अगर ना है तो उनका शायद जरूर तुम वट हुन उनमें बैंक जो नालो हो जे डेट डिनल हो जे पर्पस डिनल हो जे बैंक चेक जो नंबर डिनल हो जे उन केड़े पर्पस लाइ यो चेक डिनो तो वे वो भी उनमें अवेलेबल हो जे तो उनखा पो अगर कोई उनके बाउंस कराए तो पियो उनमें पैसा सपोज कें भी बैंक में वही कर विड्रॉ कराए तो पियो पे या विड्रॉ कराए तो उनमें सफिशेंट अमाउंट आ या वो अकाउंट सीज आ या उनमें चेक में अल्टरेशन थेल आ तो डेफिनेटली को उनमें बैंक जो मेमो लगंदो हाँ मेमो छा मेमो में सजी वो जो तक टर्म्स एंड कंडीशन बुधा तो वो मेमो में वो शूं लिखी दींदा या उनमें कढ़ी कर उनके दींदा तो बाबा इन में को अमाउंट ही ना है ये अकाउंट सीज आ या इन में इनसफिशियंट अमाउंट आ या जी डेट आ उ इन में जी सिग्नेचर थे उ सिग्नेचर उन मैच ही नथी करे पई ड्रावर सा जो चेक इशू तो करे पियो ठीक आ उ सज टर्म्स रिटन सूरत में अवेलेबल करे उनके दई छा जो पे ही वो चाहे उनके जो एज अगर उनमें डिसऑनेस्टी शामिल आ तो उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल कराए सके तो
0: हम
1: सके चाहे सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैं चुम समटाइम सिक्योरिटी पर्पज जा जी चेक्स हूं वो भी डिसऑनेस्टी में शामिल थन्दा अदरवाइज सिक्योरिटी पर्पज जा जी चेक्स हूं वो डिसऑनेस्टी में शामिल
0: सो कुछ फीडबैक है अस प्रोग्राम में शामिल कदासी ये वॉइस नोट है लेट सी कें मोकलो
2: प्रोग्राम मुझे नालो अब्दुल गफूर कलादी है मुझे तालुक कोटकी शहर से है साईको सवाल हुआ तहा का चा सिक्योरिटी चेक बाउंस थण ते सेक्शन 499F में लागू थी सके तो
1: सेम वही सवाल है सिक्योरिटी अगर चेक डिठो अगर चेक बाउंस थे तो पे या चेक डिसऑनर थे तो पे त उन जे किर में लाइबिलिटी कहिड़े पर्पज सां ऐं कहिड़ी ट्रांसेक्शन में जेको आहे ॾिनो वियो आहे इशू कंहिं कयो आहे, अगरि उहे शामिल आहिनि त ठीकु आहे, अदरवाइज़ जेको आहे सिक्योरिटी पर्पज़ सां जेको रिलेटेड चेक आहे उहो जेको आहे न एज़ अ डिसऑनर नथो थी सघे। इंटेंशन लाज़मी आहे डिसऑनेस्टी जो।
0: ऑल राइट, त उमीद आहे तव्हांखे जवाब मिली चुको हूंदो। सो कॉलर जी तरफ़ हलूं था।
1: जी जी सर,
0: लेट्स सी केर आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉलर हमेशा जेको आहे
1: इट इज़ वन ऑफ योर फेवरेट सेक्शन।
0: बट ही कॉलर्स जेके आहिनि मूंसां ईअं कंदा आहिनि हमेशा, चवंदा आहिनि थोरो असां प्रोग्राम में मज़ो बि करायूं।
1: तव्हांजी क्रीम वॾी मशहूरु आहे।
0: सो अच्छा, हिकिड़ो वॉइस नोट ॿियो बि आहे प्रोग्राम में, मां शामिल कयां पियो ऐं अचो त ॿुधूं ही छा पिया चवनि।
3: वालेकुम, आई एम मोहम्मद मेहदी, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, तो उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो उसकी कंप्लेन दर्ज करवाने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है।
0: ठीक है, आपका जवाब देते हैं। असा प्रोसीजर की तरफ
1: अच्छा।
0: अच्छा शहबाज साहब, इन खां अलावा प्रोसीजर की तरफ अचण खां पहिरां तव्हां समझो पिया काई शइ रहिजी वई आहे त असां उहा क्लियर करे देन, असां प्रोसीजर की तरफ हलूं।
1: टॉपिक बज़ाहिर ई अगरि पीपीसी में ॾिठो वञे हिकिड़ो सेक्शन आहे, पर टॉपिक ॿिनि शयुनि ते डिवाइड थियल आहे। हिकिड़ो क्रिमिनल प्रोसीजर ते डिवाइड थियल आहे, ॿियो थियल आहे सिविल प्रोसीजर ते डिवाइड। सो आहे त टॉपिक वॾो, हाणे हुनखे जीअं चवंदा न समुझ खे कूज़े में कीअं। बहरहाल हिन जूं टे कंडीशन्स आहिनि, अगरि टिनि कंडीशन्स ते अगरि उहो कोई बि चेक बीहे थो त हुन में क्रिमिनल लाइबिलिटी लॻी थी वञे। जीअं मां तव्हांखे चयुमि, हू इशूड द चेक, वाट वॉज़ द पर्पज़ ऑफ इशूअंस ऑफ चेक, ऐं फॉर विच थिंग इट वॉज़ इशूड, ऐं प्लस में देर वॉज़ एन इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टी इंक्लूडेड। अगरि इहे टे शयूं आहिनि त चेक विल बी डिसऑनर्ड, अगरि चेक न आहे त उहो क्रिमिनल लाइबिलिटी में न ईंदो।
0: ठीकु आहे, अच्छा हाणे एफ आई आर ते हिननि जो सवालु आयो, हाणे असां प्रोसीजर जी तरफ़ अचूं पिया। चेक डिसऑनर थिए पियो ऐं एफ आई आर जे लाइ जेको आहे त थाणनि ते वञनि पिया माण्हू, त अव्हांखे ख़बर आहे त एफ आई आर त सुथरी थिए कोन पई पाण वटि, त उन खां पहिरियां जेको आहे त मामला सेट थी वञणु घुर्जनि या तव्हां रिकमेंड इहो कंदो त एफ आई आर ई कराइणु घुर्जे।
1: मां अॼु खां 6 महीना 7 महीना अगरि असां पोइ ते हलिया वञूं त पाण हिकिड़ो प्रोग्राम कयोसीं मिली करे, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसिंग थीम आहे हिन वक़्तु जेको इहो हले थो पियो, त उन में मेजोरिटी ऑफ द केसिस अहिड़ा जेकी सालनि खां पेंडिंग में पिया आहिनि ऐं उन जो को हिकिड़ो कंक्लूजन नथो निकिरे। साल ब साल अगरि मिसाल को वालिद आहे उहो केस थो करे, त अगरि उहो मिसाल को ग्रांड पेरेंट आहे उहो केस करे थो त पुट था अचनि, पुट केस अगरि केस हलाईंदे हलाईंदे वीचारा फोत था थी वञनि त पोटा था अचनि।
0: अच्छा।
1: सो सालनि जा साल केस हलंदा रहंदा आहिनि, कंक्लूजन निकिरंदो पर वॾी टाइम माना हिकिड़ो लेंथी प्रोसेस थींदो। उन लेंथी प्रोसेस खां बचण जे लाइ ऐं हद खां वधीक एक्सपेंसिव यूज़ करण खां बहितर आहे त अगरि इन प्रोसेस खे थ्रू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन, जेके असां आर्बिट्रेशन ऐं मीडिएटेशन चवंदा आहियूं, हिन सिचुएशन में अगरि नेगोशिएबल जेके असां नेगोशिएशन्स, अगरि हिन सिचुएशन में अगरि कोई मिली करे कंहिंसां नेगोशिएशन करे छॾे, नेगोशिएशन्स चइबो आहे, सॉरी अगरि प्रोनाउंसिएशन थोरी घटि थी थिए छोकी असांजी लैंग्वेज त पहिरीं असांजी सिंधी आहे, ठीक आहे न, त इन जे करे अगरि को वर्डन में अगरि थी वञे छा प्रोनाउंसिएशन, त मां माज़रत कंदुमि ॿुधण वारनि खे, ठीकु आहे न, त असां हर ॾींहुं इंसान लर्नर आहे, सिखे थो पियो। सो नेगोशिएशन्स में वञी करे इन प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट करे, छोकी ॿ पार्टियूं वेही करे ईज़ीली इन प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट करे सघनि थियूं, अदरवाइज़ न कंदो त हुन में क्रिमिनल लिटिगेशन ऐं सिविल जेके आहे न लिटिगेशन ॿई हिन में इन्वॉल्व आहिनि।
0: अच्छा हिकिड़ो कॉलर शामिल करे मां हिन सां रिलेवेंट तव्हां सां सवाल कंदुसि। अस्सलाम वालेकुम। जी केर था ॻाल्हायो था?
4: लक्ष्मी गुलाम चागरा।
0: ओके, सवाल अव्हां को पुछण चाहींदो?
4: हा सर, असांजो हिकिड़ो केस आहे जेको हिन ज़मीन जा कनेक्ट आहे।
0: जी
4: हाणे पूरो असांजो कोरट मां नथो थिए, चए थो हुन में वञो जेको आहे सिविल कोरट में वञो, न कयो आहे, इहो छा मसलो थींदो?
1: मां थोरो
0: अच्छा थोरो रिपीट कयो, मसलो छा सां ज़मीन सां रेलिवेंट आहे? ज़मीन जो आहे
4: सर, घर जी सनत आहे, हाणे उहा असां केस विधोसीं कोरट शिकारपुर में, हाणे उहो चए थो सिविल कोरट में वञो जज जो।
0: अच्छा सिविल मैटर आहे जेको हिननि जो पात,
1: आई थिंक मूंखे इहो लॻे थो त हिननि अगरि ज़मीन जो मसलो आहे त 145 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इहो हूंदो आहे त हिकिड़ी असां मिसलिनियस एप्लीकेशन ॾींदऊं कंहिं बि हद जे मैजिस्ट्रेट वटि कि हिन प्रॉपर्टी ते जेको आहे न माना हीअं सम्झो त जान जो ख़तरो या जहिड़े जो ख़तरो या थी सघे थो किथे डेथ बि थी वञे, त उते इंटरवीन कयो ऐं प्रॉब्लम खे सॉर्ट आउट कयो। पर इन मामलन में मैजिस्ट्रेट छा कंदो आहे, पुलिस खां रिपोर्ट घुराईंदो आहे ऐं ॾिसंदो आहे त अगरि जहिड़ो अध खां वधीक वधियल आहे त ॿिन्हिनि पार्टीज़ खे जेको आहे न घुराए करे मसइले खे सॉर्ट आउट कराईंदो आहे। अदरवाइज़ इहे सिचुएशन्स काॾे हलिया वेंदा आहिनि सिविल हुनमें, सिविल लिटिगेशन्स में। अगरि इंटाइटलमेंट सां इशू आहे, प्रॉपर्टी कंहिंजे नाले ते आहे, त डेफिनेटली उहो जेको इशू वेंदो उहो सिविल प्रोसीजर में हले वेंदो ऐं सिविल लिटिगेशन में वेंदो।
0: ठीकु आहे
1: जी, डिक्लेरेशन में हलिया वेंदा हिन खे त सिविल सिविल कोर्ट में वञी करे डिक्लेरेशन घुरनि ऐं पार्टीशन जी डिमांड करनि।
0: ऑल राइट, सो हिकिड़ो वॉइस नोट आहे प्रोग्राम में हींअर शामिल कंदुसि, लेट्स सी छा पिया चवनि।
5: सर आउं फयाज़ अहमद खैरपुर खां अव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहियां। सर हिन टॉपिक जे हवाले सां मुंहिंजो हिकिड़ो सवाल आहे, अदालत में चेक बाउंस वारो केस आमतौर ते केतिरो वक़्तु हली सघे थो ऐं मुतासिर माण्हुनि खे कहिड़ो रिलीफ मिली सघे थो?
0: ठीक आहे, तव्हांजी महिरबानी अदा फयाज़, तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया, तव्हांजो फीडबैक बि शामिल कंदासीं ऐं हिकिड़ो ॿियो वॉइस नोट आहे इहो शामिल करे पाण खे प्रोग्राम कंक्लूड करणो आहे, पंज मिंट अची बचिया आहिनि। ठीकु आहे, सो ही छा पिया चवण अचो ॿुधूं पिया।
6: मुंहिंजो सर शहबाज़ खां हिकिड़ो नंढो सवाल हुयो त अगरि कोई माण्हू असांखे चेक ॾे थो कंहिं बि डेट जो, ठीकु आहे, पोइ अगरि उन जे अकाउंट में उन वक़्तु पैसा न आहिनि त पोइ छा असां उन जे ख़िलाफ़ काई कानूनी कार्यवाही करे था सघूं?
0: अदा थोरो सबुर कंजो, यकदमि तकड़ा न थीजो।
1: मां तव्हांखे उहो ई ॻाल्हि कई त इंटेंशन ॾिठो वेंदो, अगरि ट्रांसेक्शन मुसलसिल हलंदी थी अचे त हुन में बदनीयती शामिल न आहे।
0: अच्छा, अक्सर इन सिचुएशन में ईअं थींदो आहे त चेक ॾींदड़ जेको आहे न, अगरि हुनखे टाइम खपबो आहे त उहो फ्राइडे ते ॾेई छॾंदो आहे। ठीकु आहे, चवंदो आहे ॿ ॾींहं मूंखे मिली आहे, मंडे ते वञी करे हू कराए, ऐं उनखे एॾो ख़्यालु हूंदो आहे जो फोन कंदो आहे यार हाली फ़िलहाल तव्हां बैंक न विझो, मां पेमेंट क्लियर करायां, विझराया अमाउंट विझराया, देन तव्हां कजो। पर कुझु माण्हू इलाही तकड़ा हूंदा
1: आहिनि,
0: असां वञूं पिया।
1: आई थिंक अफ़ज़ल सवाल कयो, अफ़ज़ल जो बि इहो ई सवाल आहे।
0: जी जी,
1: त असां इंटेंशन ॾिसंदऊं,
0: ओके,
1: हुन में क्रिमिनल इंटेंशन या डिसऑनेस्टी जेकी आहे न अवेलेबल आहे या न आहे। अगरि डिसऑनेस्टी शुरू खां ई आहे
0: जी जी,
1: त उहो चेक जेको आहे न क्रिमिनल हुन में जुरिसडिक्शन में हले वेंदो। अगरि डिसऑनेस्टी न आहे उहो सिविल लिटिगेशन में वेंदो। अगरि सपोज़ हुन खां पोइ अमाउंट नथो ॾे पियो, हाणे अमाउंट रिकवर करणो आहे त सूट फोर असां रिकवरी में हलिया वेंदा या समरी सूट असां हुनखे चवंदा।
0: मतिलबु 489F में जेको आहे त डिसऑनेस्टी अगरि साबित थिए पई त हीउ सेक्शन तहत
1: इंग्रीडियंट्स कुझु मिंट अॻु में जेके ॿुधाया, अगरि उहे टई इंग्रीडियंट्स अवेलेबल हुन में आहिनि ऐं चेक डिसऑनर थिए थो विथ मेमो,
0: ओके,
1: त उन खां पोइ तव्हां जेको आहे न कहिड़े हुन में वञी सघो था, छा चवंदा आहिनि, या FIR में वञी सघो था। अदरवाइज़ न त सिविल डिस्प्यूटनि सिविल जुरिसडिक्शन में वेंदा, छोकी अमाउंट उतो ई रिकवर
0: थींदो,
1: फाइन ऐं पनिशमेंट
0: हली त पाणी ॿुधे। पनिशमेंट केतिरी आहे सर, अगरि मिसाल चेक बाउंस थिए पियो, डिसऑनर कराए पिया वठनि ऐं डिसऑनेस्टी वाक़ई साबित थिए पई, हिकु माण्हू आहे जेको टाइम वठण लाइ मुसलसल जेको आहे त दटाए रहियो आहे, मां ज़ाहिर थिए पियो त हुनखे पेमेंट ॾियणी ई कोन्हे,
1: हुनखे न ॾियणी, उहो डिसऑनेस्टी
0: FIR थी वई, त केतिरी हुनखे जेको आहे पनिशमेंट मिली सघे थी?
1: हिनखे एस पर सेक्शन बाबति 3 साल लिखियल आहे ऐं फाइन लिखियल आहे, ठीकु आहे, उहा पनिशमेंट हुनजी एतिरी आहे। ऐं प्लस में डिपेंड करे थो त केसिस 6 महीननि में बि हली सघनि था, साल में बि हली सघनि था। इन जो अल्टीमेट जेको कंक्लूजन आहे उहो पनिशमेंट ऐं फाइन ई आहे।
0: ओके, अच्छा, हलो ठीकु आहे, FIR थी वञे थी त इहो छा बेलेबल आहे, जेको एक्यूज पर्सन आहे उहो बेल कराए सघे थो?
1: इहो बेलेबल इन सेंस में आहे त अमाउंट ॾिठो वेंदो, मिसाल अगरि कंहिं 2-3 हज़ार जो, 5 हज़ार जो, 10 हज़ार जो अमाउंट, उहो त माण्हू कहिड़े टाइम बि ॾेई सघे थो। अगरि अमाउंट करोड़नि में आहे, लखनि में आहे, त उहो नॉन अवेलेबल सेक्शन थी वेंदो। उन जे लाइ तव्हांखे वरी जेको बेल जे लाइ उहो बेल जी कुझु रिक्वायरमेंट्स आहिनि, जीअं असां बेल ते बि पंहिंजो टॉपिक करे चुका आहियूं, प्रीवियस बेल जी रिक्वायरमेंट छा आहिनि, पोस्ट अरेस्ट बेल जी रिक्वायरमेंट छा आहिनि। अगरि हुन रिक्वायरमेंट्स में अचे थो पियो त हुन जी बेल थी सघे थी पई। अदरवाइज़ अगरि अमाउंट इलाही वधीक आहे त उन अमाउंट खां पोइ डिपेंड करे थो त छा कंप्लेनेंट अक्यूज पर्सन जो मेलाफाइड ज़ाहिर करे सघियो या न करे सघियो। अगरि मेलाफाइड ज़ाहिर करे वियो, हुनजो एक्सरिया ऐं मेन्सरिया बि अगरि ज़ाहिर करे थो वञे, प्रूव करे थो वञे, त ऑटोमेटिक हुनजी बेल डिसमिस थी वेंदी, अदरवाइज़ बेनिफिट ऑफ डाउट ते ऐं जेको आहे न हुनखे बेल जेको आहे न फर्दर इंक्वायरी ते हुनखे बेल मिली सघे थी पई।
0: ठीकु आहे, चलो FIR थी वई, ठीकु आहे, अक्यूज पर्सन खे जेल थी वई, हाणे विक्टिम खे पैसा केरु ॾींदो?
1: मां वंस अगेन चवां कि क्रिमिनल प्रोसीजर सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ पनिशमेंट ऐं सज़ा ई ॾींदो या फाइन इम्पोज कंदो, पर जेकी अमाउंट आहे उहो अल्टीमेट जेको रिकवर थींदो उहो थींदो सूट फॉर रिकवरी या समरी सूट में। त घुमी फिरी अगरि असां चऊं त असांखे अमाउंट मिलणो ई सिविल प्रोसीजर मां ई आहे, सिविल लिटिगेशन सां मिलणो आहे, क्रिमिनल में ज़रा सां पनिश कराए
0: पनिशमेंट मिलंदी
1: आहे, पनिशमेंट कराए
0: त हिन ते असां सिविल ते जेको आहे त पोइ नेक्स्ट प्रोग्राम में पाण डिस्कशन कंदासीं
1: ज़रूरु, अगरि टाइम मिलंदो टाइम इन इनशाला ईंदड़ टाइम में हिन ते असां हिन जे जेको आहे न समरी सूट ऐं हिन सां सिविल सां रिलेटेड इन जा इशूज़ आहिनि असां उन ते ई डिस्कशन करे वठंदासीं।
0: ठीकु आहे, अच्छा इन नट शेल तव्हां असांजे व्यूअर्स खे कहिड़ी सलाह,
1: इहा सलाह ॾींदुमि त अगरि तव्हां कोई बि चेक इशू कयो था पिया, सभ खां पहिरियों त तव्हां उहो जेको प्रोमिस्ड जेके कॉन्ट्रेक्ट आहे, कॉन्ट्रेक्ट जे अंदरि जेके प्रोमिस्ड कंडीशन्स आहिनि, प्रोमिस कंडीशन जो मक़सदु इहो आहे त जेके बि असां टर्म्स ऐं कंडीशन सेट कयूं था उनखे प्रोमिस्ड चइबो आहे, प्रोमिस कंडीशन तव्हांजूं क्लियर हुजनि, चेक तव्हांजो जेको आहे न ब्लैंक्ड न हुजे, चेक कहिड़े पर्पज़ सां ॾिनो वञे थो उहो हुन में शामिल हुजे, डेट ऑफ चेक लॻल हुजे, पेयर जो नालो लॻल हुजे, ड्राइवर जो नालो हुजे, बैंक जो नालो हुजे, अमाउंट स्पेसिफाइड हुजे ऐं उहो बि कॉन्ट्रेक्ट ते लिखियलु हुजे ऐं कहिड़ी बैंक मां निकिरंदो उहो बि लिखियलु हुजे ऐं जेको टाइम आहे त केतिरे टाइम खां केतिरे टाइम ते असां इहो जेको आहे न अमाउंट ॾेई छॾींदासीं ऐं केतिरे टाइम खां केतिरे टाइम में हे जेको चेक आहे उहो तव्हां विड्रॉ या कैश करे सघो था पिया, उहो अवेलेबल हुजे ऐं उन में जो क्रॉस्ड थियलु हुजे कॾहिं बि क्रॉस चेक, छोकी क्रॉस चेक छा थींदो आहे डायरेक्ट ई अकाउंट में हले
0: वेंदो आहे,
1: डायरेक्ट कैश न मिलंदो
0: आहे, ओपन चेक
1: न ॾियो, प्लस में कोशिश कयो त जेको आहे न चेक या त पेमेंट अगरि ॾियो त नेट कैश ॾेई छॾियो पर एज़ पर कॉन्ट्रेक्ट अल्टरेशन न हुजे, ठीकु आहे, ऐं जेको आहे न कोई बि अगरि बैंक में वञे थो सभ खां पहिरियों तस्दीक कराए त छा हे जेको मूंखे मिलियो आहे उहो चेक फेक त नाहे, उन में छा इहो अकाउंट सीज़ त नाहे, छा हे अकाउंट जेको आहे न जीअं हाणे ज़ुबैर हिकिड़ो सवाल कयो छा अकाउंट उहो फेक त नाहे, फोर्ज डॉक्यूमेंट या फोर्ज मूंखे चेक त न ॾिनो आहे, छो इहे कुझु ॻाल्हियूं आहिनि इहे तव्हांखे नज़र में रखणियूं पवंदियूं कॉन्ट्रेक्ट रिटर्न खां अलावा, ऐं प्लस में हिकिड़ी एडिशन ॻाल्हि कयां, रिटर्न में बि अवेलेबल हुजे ऐं प्लस में शायदि ज़रूरु हुन जा अवेलेबल हुजनि त इन फ्यूचर छा थी वञे तव्हांजी लिटिगेशन जो टाइम बची पवंदो,
0: कॉन्ट्रेक्ट लाज़मी करनि एग्रीमेंट जेके असां लिखत में हुजे
1: ज़रूरु हुजे,
0: छाकाणि त सुभाणे परीहं छाकाणि त चेक अक्सर
1: ठीकु आहे कंहिंजे साम्हूं बि ॾियनि भले लिखत में न हुजे, ॾिसो न कॉन्ट्रेक्ट ॿिनि क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि, हिकिड़ा हूंदा आहिनि कॉन्ट्रेक्ट एक्सप्रेस जेके वर्बल ऐं रिटर्न हूंदा आहिनि, ॿिया हूंदा आहिनि इम्प्लाइड जेके एक्शन कंडक्ट्स ऐं सर्कमस्टेंसिस ते हूंदा
0: आहिनि,
1: इन ॿिन्हिनि कॉन्ट्रेक्ट्स में हिकिड़ी शी कॉमन आहे छा द प्रेज़ेंस ऑफ विटनेसिस फाइनेंशियल इशूज।
7: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
8: منشیات کیس میں گرفتار کوکین کوئین انمول عرف پنکی کراچی ملیر جی عدالت میں پیش، کراچی سینٹرل جی عدالت پنکی کے 70 ڈیئن جی جسمانی ریمانڈ تے پولیس حوالے کرے چڈی، ملیر جی عدالت منشیات کیس میں پنکی جی ریمانڈ والی درخواست رد کرے چڈی، جیل موکلن جو حکم 14 ڈیئن اندر کیس جو چالان پہ پیش کرنے جی ہدایت، پولیس جو عدالتی فیصلو چیلنج کرن جو اعلان، پولیس پنکی کے بنی عدالتن میں ہتھک کڑیوں ہنی سخت سیکورٹی میں پیش کیا۔

0: हम तो डूबे हैं सनम, अब सबको ले डूबेंगे। मनशियात केस में गिरफ्तार कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी जो साफ ये सवाल दे जवाब। मनशियात केस में अदालती पेशी वक्त पिंकी जुदा हूँ मनपसंद बयान वठण लाए पुलिस ते तशद्दुद करण जो इल्ज़ाम। अनमोल उर्फ पिंकी चयो त बेगुनाह आहियां कुछ भी नाहे कयो सब कुछ अगोड़ो मुड़स कराए रहियो आहे। 22 ॾींहं पहिरियों लाहौर मां खयो वियो 15 ॾींहं रखियो वियो 5 ॾींहं पहिरीं हिते आंदो वियो। केस बि कूड़ा दाख़िल कया विया आहिनि जंहिं फ्लैट मां गिरफ़्तारी ॾेखारी वई मुंहिंजो नाहे। अॻोणे मुड़ ते महीना पहिरीं तलाक ॾिनी हुई का रजिस्टर्ड थियल न हो।
1: I didn't go the final. They said, could you stop? We're going to make a deal. And we really had the confines of a deal. No nuclear. They were going to give us the dust, nuclear dust, everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation. And that's taken place about 5 times. There's something wrong with them. Actually, they're crazy. And you know what? Because of that, they cannot have a nuclear weapon. Because
2: the president of China agrees with you on that.
1: And he agrees with me on that. He agrees with me that he wants to see it end. He'd like to see it end.
3: ईरान ते फैसला है तो हमलो पाकिस्तान जे कुछ सुठन मानन जी दरख्वास्त ते रोकियो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी टीवी के डिनल इंटरव्यू में चयो आहे त पाकिस्तानी शख्सियतूं ईरान जे वेझो आहिनि। हुननि चयो असां मुआदो कराए सघूं था, अवां रुकजी सघो था। रोज़ानी डील करण बाद ॿिए ॾींहं लॻंदो आहे त ईरान ॻाल्हियूं ई न आहिनि कयूं। हुननि सां कुझु मसलो आहे हू चरिया आहिनि। चीनी सदर बि ईरान वटि एटमी हथियार न रखण वारो मौक़िफ़ रखे थो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
4: किरु शोक हो ना तो खे मुझे रो पाए तैयार थेण जो
5: तू आज भी हसी
4: थोरो पाए तो देखार
6: ना। मां मां थकी पई आया।
4: ना पुट, ही थकना है, रत जी कमी है। दिस त केडो ना फिको थी हुआ है तुंजो चेहरो।
6: छा कया मां,
4: 6 महीना थी वैन पुट, तू उम्मीद साही आई हाणे वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी। कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट, तोखे खबर है असा त मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ सी। उनन साई त खून ठांदो है, इनसा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बार रखे। पुट हाणे तू मां थण वाली आही, पहंजो ख्याल रखण बियन खां प वधिक जरूरी है।
5: मेरी बात तेरे जिम्मे अब ये तुझको निभानी है।
7: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
8: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
9: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
9: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूदु हूंदा,
8: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
9: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
8: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
9: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
8: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे
6: हेलो वरना खबर ना है मैं हर वक्त तेरी थकेला थकेला सुन दिया है
7: तू खाइंदी चाहे स्कूल में बाकी बार अंजी मंझंजी मानी डिठिया है
8: सोचो जरा तुम्हें थके हो क्यों

0: केन है त तौन के रोज अंडा खारा जो मंझन जी मानी में सूफ दी जो त जियो स्कूल में मुंगुर थकेला थकेला न हो जे।
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी غذائی जुजन जी घटताई हुंदी आहे जेका उनन जे सिखण जी सलाहियत में रंडक बणजे थी। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
3: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
1: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ असां

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है पिलाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
1: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घुमदी रही आ पहरो भेरो मा थी रही आही ना मुझो भी इयो ही हाल हो।
2: खबर ना है तो वहां ही सब कुछ किया कि उन्होंने माँ ता एतरो थकी थी पवा छा कयो हो तवा
3: हो। पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध अब दूध कैसे आए ये जरा पूछ
2: किए।

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। अमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज़ न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: नजर न अची रहा है, पार्लियामेंट मौजूद है, इतिहादन सा मुशावरत बाद ही कुछ थी सके तो। कानून वारे फाकी वजीर आजम नजीर तारड़ चयवा है, हुकूमत अदलिया एग्जीक्यूटिव आइन तहत कम करण जो पाबंद आहन। असांजी गडियल हुकूमत आहे, इतिहादन जी मुशावरत खां सवाइ आइनी तरमीम कीअं करे सघे थी। वज़ीर आज़म असांजो ऐं सदर बि वॾी इतिहाद जमात जो आहे। तरमीम ते इतिहादन जी सिग्नल बाद ई मुशावरत खे अॻिते वधायो वेंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाउ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर माकली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: के हो तो आवाज भी सिंकी है। GFM 88 नेटवर्क सिंकी आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फरायन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जा सके।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर माटली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
3: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाए 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वजीरन जो सरकार जारी रखने वाले असम जो वर्चाओ तेहरान पहुंचने से सिकंदर मोमनी मोहसिन नकवी जो आदर भाग्य

फिलहाल 18वीं आईनी तरमीम जा असर नजर न अची रहा है। पार्लियामेंट मौजूद है, इतिहादियन से मुशावत बाद ही कुछ थी सके तो। कानून वाले वफाकी वजीर आजम नजीर तरड है तो हुकूमत अदलिया एग्जीक्यूटिव आइन तहत कम करण जो पाबंद आन असि गडियल हुकूमत है, इतिहादियन की मुशावरत का सिवाय आईनी तरमीम किए कर सके थी। वजीर आजम असाजो ए सदर भी वही इतिहाद जमात जो है, तरमीम के इतिहादियन के सिग्नल बाद ही मुशावरत के बधाई वेंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।